18.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम के 101.6 मेगाहर्ट्ज बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर। आज की ये पावन सुहानी भोर शनिवार की है यानी शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि तदनुसार 27 जून 2026। प्रातःकाल के 5:57 होते हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी

0: दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का विचार। आज का विचार कार्यक्रम में आज का विषय है कोई ना कोई उद्देश्य जरूर बनाए। आलेख और वाचन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है। तो लीजिए प्रस्तुत है कोई ना कोई उद्देश्य जरूर बनाए इस विषय पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा के विचार।
3: जीने का कोई मकसद है या ये बेमकसद सांसों का खेल है? जितना धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, साहित्य आदि मार्गों को जब हम गहराई से देखते हैं तो समझने में आता है कि हर कर्म के पीछे मकसद छुपा हुआ है। बिना मकसद के कोई भी काम निरर्थक है, मूल्यहीन है। इन अर्थों में जीवन का मकसद मुक्ति है। अनेक जन्मों से भटकता जीव अंतोगत्वा मुक्ति की चाहना करता है, पर यह बहुत बड़ा मकसद हो जाता है। हर कोई इसे

0: नहीं जा सकता। ये तो आध्यात्मिक जगत की बात है, पर ठीक इसी तरह से भौतिक संसार के अपने संकल्प होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं। भौतिक जगत का मकसद हासिल करने के लिए आपको संतुलित होना पड़ेगा। भीतर और बाहर आध्यात्मिक जगत से संतुलन पैदा करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आदमी चाहे निष्काम कर्म करते हुए भौतिक साधनों के बीच भी आध्यात्मिक मार्ग के शिखर तक पहुंच सकते हैं। बिना उद्देश्य के भटकने वाला जीवन न तो इस लोक में पूर्णता को प्राप्त होता है और न ही परलोक में सुधार हो सकता है। हमें गौर करना होगा कि सूर्य उसकी किरणें पौधों पर गिरती है तो उसमें नव प्राणों का संचार होता है और ये रोजाना होता है। रोजाना चांद आकाश में लालटेन जलाकर पहरा देता है। पक्षी नियमित एक ही जगह दाना चुगते हैं और उड़ जाते हैं। प्रकृति की तमाम क्रियाओं में संसार को गतिमान बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम प्रकृति के अपादान करते हैं। जो मनुष्य इसको समझ लेता है, फिर चाहे कितनी ही मुश्किलें खड़ी क्यों न हो जाए, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होता ही होता है। कहते हैं सफलता आसमान से नहीं उतरती, वह मैदान में खड़ी है हमारे खेलने की प्रतीक्षा में। वे लोग जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता बेरोजगार भटकते रहते हैं और ये भटकन बहुत बड़ी चिंता पैदा करती है। इस भटकाव में उलझकर आदमी नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाता है, इससे उसके तमाम संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। पहले तो आप काम तलाशें, फिर तारतम्य से उस कार्य को पूरा करें। एक काम पूर्ण होने के बाद दूसरा काम हाथ में लें। इस प्रकार से आप कर्म विधान दोष मुक्त हो जाएंगे और आप बड़े कर्म की तरफ मुखातिब हो पाएंगे। वैसे संत महात्माओं का कहना है कि इस शरीर का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होता है, जबकि ठोस धरातल पर भूख गरीबी के चलते लोग आमतौर पर इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक आरोहित नहीं कर सकते। तो इन अर्थों में जीवन का एक व्यापक और बड़ा लक्ष्य तय होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लें, तो यकीनन हमें अपनी जीवनचर्या और उसके आंतरिक कार्यप्रणाली पर गंभीरता से देखना होगा, सोचना होगा और काम करते रहना होगा। मन को भटकाने से भी बचाना होगा। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने एक उद्देश्य बनाया वे लोग सफलता की चोटी को छू सके, तो फिर हम भी अपना एक लक्ष्य क्यों नहीं बनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का विचार। इसमें आज आपने कोई ना कोई उद्देश्य जरूर बनाएं, इस विषय पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा के विचार सुने। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत से सुसज्जित मोतियों की माला के कुछ चुनिंदा मोती इस कार्यक्रम वंदना में आपके लिए प्रस्तुत हैं।

श्रोताओं, आज प्रातः काल की बेला में सबसे पहले उठते ही जो सबसे पहला कार्य करना चाहिए वो है कर चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मान संवापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। अर्थात हे करुणा के सागर महादेव शंभो, मेरे हाथों पैरों वाणी शरीर कर्म कानों आंखों या मन से हुए सभी ज्ञात अथवा अज्ञात अपराधों को आप क्षमा करें, आपकी जय हो।

नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि सनेश्वरं। आज शनिवार है, यानी शनि देव का दिन, जिनको हम लोग कहते हैं ओम शनेश्वराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। आइए उनके नाम भी एक भजन वंदना कार्यक्रम की अगले मोती माला में से एक मोती।

भक्तिमय बनाते हैं। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले, राक्षस रूपी वन के लिए अग्नि के समान, ज्ञानियों में अग्रणी, सभी गुणों के भंडार, वानरों के स्वामी, श्री राम के प्रिय भक्त, पवन पुत्र हनुमान जी की इस वंदना से।

हनुमान जी की इस आरती के साथ ही वंदना कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड दोहा संख्या 189 से दोहा संख्या 191 तक की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है। 7-1

शुक्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय, भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्म लोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

रामचरितमानस कान। अभी आपने बालकांड दोहा संख्या 189 से दोहा संख्या 191 के अंतिम चौपाई तक सस्वर पाठ सुना। संगीत सतीश भाटिया का था। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सूर्य किरणों की पहली दस्तक के साथ मर्धना की सांस्कृतिक धरा से मैं आपका आज इस सुहानी सभा में सभी का आत्मीय अभिनंदन करता हूं। साहित्य संगीत और सूचनाओं के संगम में आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर के आए हैं, ज्ञान और मनोरंजन की एक विशेष श्रृंखला। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कुछ देर में आप सुनेंगे 6:45 पर खेती की बातें। इसमें आज का विषय रहेगा फसलों में जल उपयोग की दक्षता। वाचक स्वर श्री देव।

समाधान रत्नों का होगा। 6:50 पर समय रहेगा लोक भजन का। हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे 6:55 पर, और 7 आपका विशेष पसंदीदा कार्यक्रम होगा सुप्रभात। फिल्म संगीत में कुछ चुनिंदा फिल्मों के गीत लेकर आपसे मिलेंगे 7:30 पर। प्रातः 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात, और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से सौरभ कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे एक वार्ता, छुपा हुआ जल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर एमएल जांगेड़। समय याद दिला दें, सौरभ कार्यक्रम के लिए समय रहेगा 8:30 पर। 8:45 पर हमारी इसी सभा में सुगम संगीत सुन पाएंगे आप, और 9 हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नौ पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सितार वादन। आज के कलाकार होंगे मुंशी खान। इसमें आज आप इनका सितार पर बजाया राग जय जयवंती सुनेंगे। 10 आपके लिए पुनः हाजिर होंगे कुछ चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम में, और 11 आपके फोन पर आधारित यानी आपकी इच्छाओं फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। ये फोन इन पर आधारित कार्यक्रम है, इसे आप सुनेंगे। इसमें सूत्रधार रहेंगी श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी की, थानवी व्यास की, और संयोजन श्री अमित सिंह का। दोपहर की सभा में समाचार होंगे हिंदी में 12 और 12:10 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोता महिला जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर, जल जीवन मिशन हर घर जल, स्मार्ट बिजनेस को अपनाएं महाराजा रणजीत सिंह पुण्यतिथि पर। एक वार्ता होगी महात्मा बुद्ध के उपदेशों की प्रासंगिकता, वार्ताकार होंगी श्रीमती कांता मीना। इसके अलावा आप सुनेंगे रसोई से ब्यूटी टिप्स और संगीत। आज की कार्यक्रम पेश करेंगे गीता शर्मा और साक्षी गोस्वामी। महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा 1:05।

संध्या 5:05 पर सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। इसमें आज की बात दैनिक योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ, लघु जानकारियों की सड़क सुरक्षा और युवा पर स्वयं के लिए समय निकालें, किसी को ताना ना दें, इन विषयों पर बातचीत करेंगे दिशा भाटी और शारदा नैन संध्या 5:05 पर। इसमें एक वार्ता होगी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। वार्ताकार होंगे श्री मुरली मनोहर सारस्वत। कार्यक्रम की प्रस्तुति श्री रेवंतराम लेघा की होगी और संयोजन श्री अमित सिंह का। संध्या 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके पश्चात 6:05 से होगा फिल्म संगीत। 6:30 पर आप सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी का समय रहेगा और 6:45 पर होगा राजस्थानी प्रादेशिक समाचार। ग्रामीण जगत कार्यक्रम में गूंजे गांव गुआड कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम संध्या 7:00। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और आज आपका चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम बीकानेर दर्पण प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 8:00। बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। वाचक स्वर होंगे श्री महेश उपाध्याय, प्रस्तुति श्री रेवंतराम लेघा की और संयोजन श्री अमित सिंह का। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे विज्ञान भारती, ये कार्यक्रम होगा 9:30 पर और रात्रि 10:00 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे प्रभात मुखोपाध्याय, जो आपको इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सितार वादन।

आशा है सुरों और सूचनाओं का यह सफर आपकी सुबह से लेकर शाम तक को यादगार बना देगा। तब तक शब्दों की मर्यादा और सुरों के माधुर्य के साथ हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। आशा है आज का ये प्रसारण आपकी स्मृतियों में एक अमिट छाप छोड़ेगा। तो जुड़े रहिएगा आकाशवाणी बीकानेर से।

0: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज अब बात करते हैं हम फसलों की जल उपयोग दक्षता पर। कोई भी फसल हो, उसमें जल का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाना महत्वपूर्ण पहलू है। जल से किसी फसल से कितनी शुष्क पदार्थ या उपज प्राप्त होती है, यह उस फसल की जल उपयोग दक्षता कहलाती है। फसलों की जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के कुछ उपाय हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस्म पर, फसल या किस्मों का चुनाव हम इस पे निर्भर करता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक उपज देने की क्षमता है या नहीं। भले ही इसका जल उपयोग कुछ ज्यादा हो, उपज बढ़ाने, बीमारी या कीट अवरोध पैदा करने, गहरी जड़ वाली अल्पायु किस्म विकसित करने के लिए पौध प्रजनन प्रत्यक्ष रूप से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में सहायक होती है। शस्य नियोजन। किसान भाइयों, जल की उपलब्धता, मात्रा एवं वितरण सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। अतः सुनिश्चित शस्य नियोजन द्वारा ही उपलब्ध जल साधनों से पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में फसलों की अवधि विशेष महत्वपूर्ण है। माना कि किसी स्थान पर लंबी अवधि तक सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वहां हम लंबी अवधि वाली फसल बोना लाभप्रद है, क्योंकि ऐसी स्थिति में फूल आने या बीज आने की अवस्थाओं पर जल की कमी से फसल को हानि होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आगे है सामयिक बुआई। बुआई बखत पर बुआई। उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग के संदर्भ में बुआई महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फसल द्वारा संरक्षित नमी का उपयोग, फसल का शीघ्र वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर लेना, जड़ों का अच्छा विकास, ये सब समय पर बुआई के लक्षण हैं। पौधे के बीच उचित फासला रखना। प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या, पंक्तियों की दिशा का प्रभाव और सौर ऊर्जा के परिग्रहण तथा उपयोग पर पड़ता है, जिसका प्रभाव अंततः उपज और उपयोग दक्षता पर पड़ता है। किसान भाइयों, उर्वरक का प्रयोग दक्षता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
1: कोई बंद कट है, तैयार कर ले सा। पौधों में पोषक।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती की बातों में फसलों की जल उपयोग दक्षता पर दीवान दान रत्नों की वार्ता। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है लोक भजन।

अरे काली भूरी दोनों दी जो एक बनेला बरड़ी, काली भूरी दोनों दी जो एक बनेला बरड़ी, रे मारा राम रघुनाथ इतरावर तो माने थी जो

0: अब्दुल करीम के गाए इस लोक भजन को आपने अभी सुना। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हमारे प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। 6:55 होने को है। आपसे कुछ दिन आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। 15-2000 वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मन्त्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः 4,000+ सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद सूरत वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य 14 जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः।

0: भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवा विस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमंत्री अमित शाह गतवासरे मादक द्रव्याणि विरुध्य संयुक्त संघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादक द्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रिय सुरक्षायै, सामाजिक स्थिरतायै, आर्थिक हिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिक नेत्रीन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेशारक्षिबलेन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टो जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां, दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजते हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात बीकानेर। सुबह की ताजी हवा के साथ आप सुन रहे हैं हमारा आज का रेडियो शो और आप सुने इसे लगाया है बीकानेर के ढुलामरु चैनल पर। मैं हूं आज आपका दोस्त साथी। आज की सुहानी सुबह को और अधिक रंगीन और सुहानी बनाने के लिए यह सुबह शुरुआत है सुबह की ऊर्जा का। ये वही वक्त है जब आपका दिन मुस्कान और जोश से भरा होता है, ऊर्जा का नया संचार हो रहा होता है और सुबह सुबह की जो हवा है आपके अंदर अलग ही प्रकार की ऊर्जा, एक अलग ही प्रकार की स्फूर्ति पैदा करती है। जो रोज सवेरे सवेरे सुबह सुबह सूर्य के उगने से मुकाबला करते हैं कि आज तो मैं इसको हरा के रहूंगा, इससे पहले कुछ देर पहले जरूर उठूंगा, ये जब आपकी नियति में आता है तो आपका दिन ऊर्जा से भरा हुआ होता है, लबालब होता है। तो मैं हूं आज आपकी सुबह को थोड़ा सा और अच्छा ऊर्जावान बनाने की कोशिश में लगा हुआ आपका दोस्त, आपका साथी। हल्की हल्की सी धूप उठने लगती है, ठंडी ठंडी सी प्यारी सी हवा चल रही होती है, क्योंकि शाम को थोड़े थोड़े छिटपुट

तो श्रोताओं, आज कुछ जरूर ऐसा कीजिए, क्योंकि हर सुबह एक नया मौका आपको मिलता है। आज कुछ ऐसा जरूर कीजिएगा जिसे आप कल याद करके मुस्कुराएं और कहें, वाह क्या दिन था वो भी जिसमें मैंने ये काम किया था। ऐसे ऐसे काम आपकी लिए जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आप अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ बनाते चले जाएंगे।

कुछ याद आया, हम लोग जब बचपन में स्कूल जाया करते थे, सवेरे सवेरे बैग टांगे हुए, ड्रेस वगैरह पहनते हुए, बिल्कुल चिपटे से बाल बनाए हुए, तेल लगा हुआ मुंह पे, और बिल्कुल अच्छे ढंग से कुछ भी नाश्ता मुंह में किए हुए, ठूसे हुए चलते जा रहे हैं सड़कों पे, आनंद लेते हुए जा रहे हैं ठंडी हवा का, पता ही नहीं चला कि स्कूल का रास्ता कब खत्म हो जाता है। तो आज आपकी सुबह की सवेरे की ताजगी के साथ आपके साथ फिर से मैं जुड़ा हुआ हूं। आज हम लोग बातचीत करेंगे कुछ योग से जुड़े हुए कुछ फायदों की, जो जीवन को शांत और स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। भाई देखिए ना, शाम आपकी जब तक गुजरती है तो दिन भर की कई सारी पशुपेश में गुजरी हुई वो बातें होती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन यदि आप एक लंबी सी ठंडी सी सांस अंदर तक खींचें और उसके बाद इस सांस को निकालें और अपने शरीर को पूरा पूरा ढीला छोड़ दें, तो आप जानते हैं कि आप अपने 77% तनावों को शांत कर सकते हैं। आपकी बॉडी इसके लिए पूरा पूरा सहयोग देगी। और आज के विषय की अगर मैं बात करूं तो आज के विषय का सार यही है कि योग से बहुत सारे फायदे जुड़े हुए हैं। भाई ये जहां पर आपको मानसिक संतुलन और ध्यान तो देता ही है, तो वहीं पर आपकी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। थोड़ी सी नींद भी आपको पूरी एनर्जी दे देती है। जैसे योग से जुड़ी हुई श्वास क्रियाएं अगर आप करते हैं, ध्यान तकनीकें मन को शांत करने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी धीरे धीरे नींद का अभ्यास, वो आपकी जो रात की नींद जो होती है टूटन भरी, जिसके अंदर आप पूरी रात सोने के पश्चात भी कहते हैं, मैं ज्यादातर लोगों को सुना है, भाई आज तो मैं सो ही नहीं पाया सही ढंग से। भाई क्यों नहीं सो पाए, आप आराम से सोए हैं, आपको अगर आप उनको रात को उठा के देखें तो डेफिनेटली सो रहे होंगे, लेकिन जब आप सवेरे उनसे पूछेंगे तो यही कहेंगे, ओहो आज तो पूरी रात ही नहीं सोता, सोया आज मैं करवटें बदलते रहा। तो ये इसी कारण से है क्योंकि आपका शरीर आपसे कुछ योग के द्वारा तनाव मुक्ति मांग रहा है। तो नींद की गुणवत्ता में सुधार करता ही है। फिर साथ में आपका जो धीरे धीरे घटता हुआ लचीलापन, क्योंकि अगर हम सवेरे सवेरे डी विटामिन नहीं लेते हैं, सूर्य की प्रारंभिक ऊर्जा को नहीं अपने अंदर लेते हैं, तो हमारे धीरे धीरे कैल्शियम का फॉर्मेशन, सी विटामिन की कमी के कारण हमारे यहां पर काफी सारे बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। अब धीरे धीरे जिसको बुढ़ापा ना कहते ना, वो यही तो है। तो इसमें लचीलापन और जोड़ों की गतिशीलता में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। स्ट्रेचिंग से इसे आप सही कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बॉडी के अंगों को खिंचाव देते रहिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, उंगलियों को हिलाना, आंखों को हिलाना, अपने पंजों को हिलाना, उंगलियों को, पांव की उंगलियों को हिलाना, हर एक जोड़ को थोड़ा सा मूवमेंट देना, तो आपके दर्द और अकड़न में भी इसमें कमी का अनुभव आप कर पाएंगे। ऊर्जा और सहन शक्ति में आपके लगातार बदलाव दिखाई देगा आपको। आपको लगेगा कि आज तो मैं कितना एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। डे बाई डे आपको ऊर्जा बढ़ती हुई सी प्रतीत होगी। फिर साथ में जो आपका ध्यान रखता है वो आपके हर्ट और मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखता है। श्वसन स्वास्थ्य से बहुत अधिक जुड़ा हुआ इलाका है। फिर जहां पर आपके श्वसन का ध्यान रख रहा है, हर्ट का, आपके दिल का ध्यान रख रहा है, तो हम भी आज आपके दिल का ध्यान रखते हुए एक प्यारा सा अरिजीत सिंह की आवाज में एक गीत सुनाते हैं।

0: प्रति रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति
1: हेल्दी बीकाना। तो हम लोग सब मिलकर के बनाएंगे हेल्दी बीकाना। इसके लिए आपको उठाने के लिए सुबह सुबह हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे कार्यक्रम सुप्रभात की ताजगी और ऊर्जा के साथ। आप अपनी ऊर्जा को इसी प्रकार से बनाए रखेंगे तो फिर क्या फायदे होंगे। देखिए आपके मन में आएंगे कई सारे विचार और आज हमारा जो विकसित भारत है या विकासशील भारत है आज वो दिन ब दिन बढ़ रहा है नए नए इनोवेशन और स्टार्टअप्स के बारे में। और हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका की सरकार पूरी पूरी तरह से सहायता प्रदान कर रही है ताकि वो आज छोटे छोटे गांवों में बसे हुए इतने सारे उद्योग धंधों को बाहर लाकर एक बड़े पैमाने पर भारत का एक ऐसा नक्शा दिखाना चाहती है जहां पर लोग जाने कि भारत कितनी अच्छी प्रगति कर सकता है यदि घर घर में बैठे हुए एक एक व्यक्ति के पास में अपना खुद का उद्योग हो। आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये ऊर्जा से भरा हुआ दिन है ना, तो ऊर्जा को कहीं ना कहीं तो आप लगाएंगे। सुबह सुबह आपने इतनी सारी ऊर्जा ले ली, अब इस ऊर्जा को जब भी कभी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कहां पर इस्तेमाल करेंगे, आपके ज्ञान को कहां पर इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे। इनोवेटिव आइडियाज आएंगे आपके दिल में, दिमाग में,

क्योंकि अब देखिए ना, सुबह सुबह की जब आपकी जो आपकी भोर होती है उसका टेम्परेचर होता है 30 से लेकर के 36 डिग्री तक, अभी आज की बात बतला रहा हूं मैं आपको। दोपहर तक ये 40 से 42 के बीच में चला जाएगा, तब आप वहां पर सवेरे सवेरे जब विचार आते हैं वो आप 40 से 42 डिग्री पर तपते हुए तो नहीं सोच सकते। इसलिए अभी बहुत सही समय है, हम लोग आपके बारे आज हम लोग मना रहे हैं MSME दिवस, यानी अगर मैं कहूं इसको हम लोग मना रहे हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का दिन। ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वे छोटे छोटे से बिजनेस होते हैं जो हमारी नौकरियां बनाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और नए विचारों को हमारे सामने, हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करते हैं। राजस्थान से लेकर इंडिया के हर कोने में दर्जनों, क्या खूब सारे सैकड़ों आपके पास छोटे छोटे उद्यमकर्ता मिल जाएंगे, कारीगर, किसान उत्पादक, टेक स्टार्टअप, महिलाओं के स्वरोजगार। आजकल आप देखो क्लाउड किचन यहां पर कितना अधिक चल रहा है, आप ये देखें महिलाएं किस तरह से इन 12 वर्षों के अंदर सशक्तिकरण को अपनाते हुए अपने आप को

एसएमई दिवस, यानी अगर मैं कहूं इसको हम लोग मना रहे हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का दिन। ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वे छोटे छोटे से बिजनेस होते हैं जो हमारी नौकरियां बनाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और नए विचारों को हमारे सामने, हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करते हैं। राजस्थान से लेकर इंडिया के हर कोने में दर्जनों, क्या खूब सारे सैकड़ों आपके पास छोटे छोटे उद्यमकर्ता मिल जाएंगे, कारीगर, किसान उत्पादक, टेक स्टार्टअप, महिलाओं के स्वरोजगार। आजकल आप देखो क्लाउड किचन यहां पर कितना अधिक चल रहा है। आप ये देखें महिलाएं किस तरह से इन 12 वर्षों के अंदर सशक्तिकरण को अपनाते हुए अपने आप को देश के को उन मजबूत कंधों पर, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग उन मजबूत कंधों पर इस देश को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो उन कंधों के अंदर जहां पर आपके पुरुष और युवा आज जहां तक अपना साथ निभा रहे हैं, वहीं पर महिलाएं भी किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं और वो भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा पुरजोर प्रयास कर रही हैं। इसलिए आप देखें कि कितने सारे उद्योग धंधे जो हैं वो महिलाओं ने अपने घर से ही शुरू किए और छोटी छोटी सी उनकी जो कला धर्मिता है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो शौक हैं, उनको उन्होंने अपना व्यवसाय बना, उद्यम बनाया और आज इस प्रगति के मैदान पर आज आप देख लें हर क्षेत्र में, भले ही आप किसी टैक्सी या किसी रेल या किसी विमान को उड़ाते हुए देख लें, कहीं युद्ध में जाती हुई स्त्रियों को देख लें, हर जगह पर वो अपना कदम से कदम मिलाकर चलने की बात सोच रहे हैं। राजस्थान से लेकर के हम लोग चाहते हैं कि इंडिया को हर जगह पर हमारी जो उत्पादकता है, हमारे जो लघु और मध्यम और सूक्ष्म उद्योग हैं, इनको हम लोग वहां तक पहुंचाएं। क्या आप एमएसएमई के बारे में जानते हैं? यानी कि आप सरकारी योजनाएं, आसान कर्ज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आप लाभ उठा सकते हैं। इन स्थानीय एमएसएमई सेंटर्स पर या विभाग पर आप लोग जा सकते हैं और इसके बाद यहां पर आपको खूब चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ चीजें जो हम लोग कर रहे हैं काफी सालों से, लेकिन अगर मान लीजिए उतना उद्यम नहीं आ पाया है तो इस उद्यम को हम लोग और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी उद्यम को हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे सामने ही तो सब चीजें पड़ी हैं, लेकिन हम लोग अभी उसको पूरा पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे घर में ही कोई ऐसा बंदा रह रहा होता है कि जो बहुत ही कलाधर्मी है, बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। अब क्यों नहीं ध्यान दे पाते? क्यों? क्योंकि हम लोगों को कई सारी चीजें इग्नोर करने की आदत पड़ गई। ये इग्नोरेंस हटाइए और इस इग्नोरेंस को बदलिए अपने सामने उगते हुए सुबह के बारे में, सामने उगते हुए सवेरे के बारे में सोचने पर अपने आप को मजबूर कीजिए।

तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आपके छोटे छोटे प्रयासों से ही आप बहुत कमाल कर सकते हैं। एक छोटी छोटी शुरुआतें ही जो होती है ना, बड़ी कामयाबी बनकर के आपके सामने आती है। अगर आपको विचार है तो उसका पहला कदम उठाइए, देर मत कीजिए। खरीदारी में भी MSME को प्राथमिकता दें, रोजगार बढ़ेगा, छोटे छोटे घरेलू लघु उद्योग बढ़ेंगे। जो कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, तो आप भी बनिए वोकल फॉर लोकल। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और समुदाय भी हमारा मजबूत होगा। और हर रोज जिस ऊर्जा के साथ आप उठते हैं, उसी ऊर्जा के साथ कुछ नया सोचते रहिए। नए सोचते रहने से क्या होगा, आपकी ऊर्जा शक्ति लगातार नित्य निरंतर बनी रहेगी। देखिए ना, हमारे साथी भी तो यही कह रहे हैं।

तो श्रोताओं, इस बीच में आपको बता देता हूं कि आज का तापमान सवेरे सवेरे 30 से 36 डिग्री तक रहा और दोपहर तक ये तापमान 40 से 42 डिग्री तक होने वाला है।

तो अपने इरादों को और अपने गानों को और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ज़रूर कुछ ना कुछ नया बनाए रखें। ये नयापन जो है आपको एक नई ऊर्जा देता रहेगा, और आप हमेशा हमारे साथ यदि जुड़े रहते हैं तो फिर आपको ये नई ऊर्जा देने के लिए हम आपका सहयोग कर सकते हैं। आप बस सुनते रहिएगा आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल। जैसे जैसे आपकी सुप्रभात आएगी तो सवेरे सवेरे आपके दिन को और खुशनुमा और अधिक संगीतमय और अधिक सांस्कृतिक और अधिक योगमय बनाने के लिए हम उपस्थित होंगे। आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मानसिक हो चाहे आपकी शारीरिक सेहत का मामला हो, आपको हमेशा अपने अंदर कुछ नया बदलाव दिखते रहना चाहिए। ऊर्जा से भरा हुआ आपका यदि तन और मन रहता है तो आप लोग निश्चित ही कुछ नया कर सकते हैं। हम लोग बातें करते हैं खूब सारी नई नई चीज़ों की। अब देखिए ना, इतनी सारी बातें 12-13 सालों में हम लोग जो लेकर के आए हैं, आकाशवाणी ने 90 वर्ष बिता दिए, और इस 90 वर्ष में आपके साथ लगातार आपके उन हर क्षणों तक जुड़ा हुआ रहे हैं, भले ही वो क्षण आपके अकेलेपन का हो, चाहे आपके साथ का हो, चाहे सब लोगों के मिलजुल कर होने वाले प्रयासों का हो। हम आपके साथ थे, आप हमारे साथ थे, और आपके ही साथ ने इस कार्यक्रम को और भी बेहतरीन बनाया। आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम को और अधिक आनंद लेते रहें, इसी प्रकार से सुनते रहें आकाशवाणी बीकानेर के सुप्रभात कार्यक्रम को। लेकिन अब समय हो रहा है पूरा, तो लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे कल की सुबह। सुप्रभात।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म फर्ज से अभी आपने एक गीत सुना। आवाजें सनी देओल, लता मंगेशकर और उदित नारायण की थी। इस गीत को अपने संगीत से सजाया था उत्तम सिंह ने और इस गीत को लिखा था समीर ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आपने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की आवाज़ में दिल्ली सिक्स इस फिल्म से ये गीत सुना, साथ में आवाज़ थी श्रेया घोषाल की।

जब हा हा भैया दाय भाव दियो दिल नकबर बंत बजावत जेन सनैया जगते मोहन मन में आए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

देखोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते दिन बीतेगा मस्त रहोगे। बेटा है जितना कोई उतना ही पाता है, तो

0: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है, सुबह की किरणें आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी, नमस्ते जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी
1: जय।
0: नमस्ते नमस्ते ऐसा बोल को,
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

अभी श्रोताओं ने सुना बाबरची फिल्म से गीत। इसमें आवाजें थी मन्ना दे, किशोर कुमार, हृदयनाथ मंगेशकर और साथियों की। इस गीत को धुन से सजाया था मदन मोहन ने और इसको लिखा था कैफी आजमी ने। आकाशवाणी बीकानेर से फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हमारे प्रातःकालीन सभा की बेला में। लीजिए अब सुनिए, आशा भोसले की आवाज में सुनते हैं अंगूर फिल्म से गीत। इसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने और इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

अंगूर फिल्म से इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होने को होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर प्रातः के 8 बजने वाले हैं। से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात, और उसके पश्चात समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटेनिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के

0: अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडम्बे मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फतार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने

0: बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ लोगों को प्रश्न होगा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे के हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: यह कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
4: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इस

0: एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद। सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ते ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में दो बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए। राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए। राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स में 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: decades-long Babri Masjid Ram Janmabhoomi title dispute and paved the way for the construction of the Ram Temple, the recent controversy around irregularities in donations threatens to tarnish the temple's status. Australia eyes stronger social media ban for children, reports The Pioneer. NCERT drops French-Russian revolutions from class 9th books, informs The Tribune. And finally, Ireland script history with maiden T20 international win over India, reports The Statesman. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. UN Home and Corruption Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela. Sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, two-time champion Uruguay cash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: अभी श्रोता सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से मॉर्निंग न्यूज। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:30 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सौरभ। सौरभ कार्यक्रम के तहत आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता, छुपा हुआ जल। इसके वार्ताकार हैं डॉक्टर एम एल जांगीर। तो लीजिए प्रस्तुत है सौरभ कार्यक्रम में ये वार्ता, छुपा हुआ जल।
3: जल है तो जहान है। जल मानव एवं प्रकृति दोनों के लिए अत्यावश्यक है। हम जानते हैं कि शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है। शुद्ध जल पारदर्शी होता है और एक अच्छा विलायक भी। पानी, लवण, अम्ल, क्षार, चीनी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को अपनी घोल लेने में समर्थ है। डीएनए के अधिकांश घटक पानी में घुल जाते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। प्रकृति जल का उपयोग सम्यक ढंग से करती है, जबकि मानव इसका उपयोग अधिक एवं बेतरतीब ढंग से करता है। पानी के अधिक दोहन खाद्य पदार्थों के उत्पादों को बनाने एवं विलासिता की युक्तियों बनाने में पानी का प्राकृतिक भंडार तेजी से खाली होता जा रहा है। माना जाता है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा। ऐसा क्यों? आइए इसके बारे में विस्तार से चिंतन करें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए औसतन 8 गिलास पानी पीने के लिए पर्याप्त है। हम एक गिलास पानी गिरने या गिराने पर चिंतित होते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि एक कप चाय में लगभग 41 लीटर पानी को हमने अप्रत्यक्ष रूप से व्यर्थ कर दिया है। एक कप कॉफी पीने से 140 लीटर पानी प्रयुक्त हो चुका होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 2 कप चाय और 2 कप कॉफी पीता है तो प्रतिदिन लगभग 360 लीटर, प्रति मास लगभग 10,800 लीटर, प्रति वर्ष लगभग 1.32 लाख लीटर और अपनी लगभग 60 वर्ष की आयु तक लगभग 80 लाख लीटर पानी को मात्र चाय और कॉफी के माध्यम से ही नष्ट कर चुका होता है। अन्य पेय एवं खाद्य पदार्थों के उपभोग से पानी की नष्ट या अप्रयुक्त मात्रा का आकलन करना मुश्किल एवं चिंता को बढ़ाने वाला होगा। हमें यह जानकर अत्यंत आश्चर्य हो सकता है कि 1 किलोग्राम पनीर के उत्पाद तक 5,000 लीटर जल का काम आ चुका होता है, जबकि औसत कार के बनाने में लगभग 5 लाख लीटर का बलिदान हो चुका होता है। इस प्रकार जल या पानी को कहते हैं आवासीय जल, छद्म जल, छुपा हुआ जल अर्थात वर्चुअल वाटर। इस आवासीय या छुपे हुए जल की अवधारणा दी डॉक्टर जॉन एंथोनी एलन ने। लंदन के किंग्स कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर एलन ने 90 के दशक में अपने शोध वर्चुअल वाटर टैकलिंग दी थ्रेट टू आवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स के माध्यम से विभिन्न

उत्पादों में खर्च पानी के बाबत चिंता व्यक्त की। डॉक्टर एलन को इस महत्वपूर्ण एवं नवाचार चिंतन हेतु 2008 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आभासी या वर्चुअल जल किसी उत्पाद के लिए आवश्यक जल की वह मात्रा होती है, जल की मात्रा यह छुपी हुई होती है। प्रोफेसर एलन के अनुसार किसी खाद्य पदार्थ एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन में आवश्यक जल की मात्रा आवासीय जल की मात्रा है। होक्सत्रा एवं चैपगन के अनुसार आवासीय जल किसी उत्पाद के विविध चरणों में प्रकुल प्रयुक्त जल के तुल्य है। अन्य शब्दों में किसी उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त शुद्ध जल की मात्रा जो उत्पादन के समय उस स्थान पर मापी गई है जहां वास्तविक रूप से उत्पादन हुआ। आवासीय जल को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रीन अर्थात हरा, ब्लू अर्थात नीला, ग्रे अर्थात भूरा। ग्रीन वर्चुअल वाटर का तात्पर्य वह बरसाती पानी जो उत्पादन के समय उड़ गया या काम आया। ब्लू वर्चुअल वाटर का तात्पर्य उत्पादन के लिए प्रयुक्त सतही या भूमिगत पानी से है जो काम आया या वास्तविकृत हुआ। ग्रे वर्चुअल वाटर का तात्पर्य वह प्रदूषित जल जो उत्पादन के संदर्भ में प्रदूषित हो गया। खाद्य एवं अन्य किसी भी उत्पाद के तैयार होने तक उक्त तीनों प्रकार का आवासीय जल भारी मात्रा में प्रयुक्त हो चुका होता है। इसी आवासीय जल की छुपी हुई एवं अत्यधिक मात्रा से हमारे जल भंडार अत्यधिक रीते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर शुद्ध पीने योग्य पानी मात्र 3% है, जबकि 97% खारा। पीने योग्य पानी की 68.7% ग्लेशियर, 30.1% भूमिगत जल एवं 0.9% तथा सतही जल के रूप में मात्र 0.3% है। इस सतही जल में 87% जिलों में, 11% मात्रा दलदली वनों में और शेष मात्र 2% ही नदियों में मिलती है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। नदियों में उपलब्ध जल मात्रा को प्रदूषित कर हम अपना जीवन खतरे की कगार पर ले जा रहे हैं। अतः यह अत्यावश्यक है कि हम ऐसे उत्पाद और कम उत्पादित करें और कम प्रयोग करें जिससे आवासीय जल की अधिक मात्रा काम आती है। दैनिक गतिविधियों में आवासीय जल की मात्रा बचाते हुए भविष्य हेतु पानी की बचत, सुरक्षा एवं संचय करने में कामयाब हो सकते हैं। आइए देखें कि विभिन्न फल, सब्जी, खाद्य पदार्थों, घरेलू उपयोग के सामान, कपड़ों आदि में कितना औसत आवासीय पानी काम आ चुका होता है। सेब 1 किलोग्राम 1812 लीटर, नारंग 1 किलोग्राम 365 लीटर, सरसों का तेल 1 किलोग्राम 4643 लीटर, आलू 1 किलोग्राम 213 लीटर, टमाटर 1 किलोग्राम 302 लीटर, गेहूं 1 किलोग्राम 1300 लीटर, चावल 1 किलोग्राम 3400 लीटर, चाय 1 कप 41 लीटर, कॉफी 1 कप 140 लीटर, दूध 1 किलोग्राम 2068 लीटर, दूध पाउडर 1 किलोग्राम 6368 लीटर, बियर 1 गिलास 91 लीटर, शराब 1 गिलास 140 लीटर, टोस्ट 1 किलोग्राम 2400 लीटर, पनीर 1 किलोग्राम 5000 लीटर, अंडा 1 किलोग्राम 3300 लीटर, मांस 1 किलोग्राम 15500 लीटर, सूती शर्ट 4100 लीटर, जींस 10850 लीटर, पेपर शीट 10 लीटर, आईसी चिप 32 लीटर, सौर ऊर्जा 110 लीटर प्रतिदिन प्रति घर, आणविक ऊर्जा 1160 लीटर प्रतिदिन प्रति घर, कार 1.1 टन वजनी 5 लाख लीटर। ऐसे अनेक आंकड़े जो पानी की उपयोगिता एवं व्यर्थ अपव्यय को बताने में सक्षम है। बताए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि गेहूं के उत्पाद में चावल के उत्पाद की तुलना में मात्र 38% पानी का ही उपयोग होता है। मांसाहारी उत्पादों में बहुत अधिक आवासीय पानी उपयोग हो चुका होता है। आवासीय पानी की दृष्टि से सौर ऊर्जा आणविक ऊर्जा से 10 गुनी सस्ती है। किसी देश की भौगोलिक रचना, लोगों की

0: स्थिति एवं रहन सहन, पानी तथा आवासीय पानी के उपभोग को बताने में सक्षम है। यथा आम भारतीय के लिए 717 मीटर घन मीटर प्रति वर्ष आवासीय पानी का उपयोग होता है, जबकि विभिन्न राज्यों में इसके उपयोग का मान 451 से 1357 घन मीटर प्रति वर्ष है। आम अमेरिका वासी चीन की तुलना में 3 गुना अधिक आवासीय पानी का उपयोग करता है। अमेरिकी शोध के अनुसार प्रति मनुष्य प्रतिदिन 1000 लीटर जीने के लिए पर्याप्त है, जबकि औसतन शाकाहारी 2600 लीटर और औसतन मांसाहारी 5000 लीटर आवासीय पानी का उपयोग कर लेते हैं। विभिन्न उत्पादनों के आयात निर्यात के संदर्भ में उत्पादों के साथ जुड़ा आवासीय पानी का भी आयात निर्यात होता है। सन 1995 से 1999 के मध्य आवासीय पानी युक्त उत्पादों के बड़े निर्यातक थे अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, अर्जेंटीना और भारत, जबकि आयातक थे श्रीलंका, जापान, नीदरलैंड, कोरिया और चीन। खाद्य पदार्थों के संदर्भ में गेहूं 30.20%, सोयाबीन 17.07%, चावल 15.36% आदि के साथ विश्व स्तर पर आवासीय पानी के उत्पाद में अग्रणी है। अतः पानी की बचत के संदर्भ में आयात से लाभ, निर्यात से हानि होती है। अतः प्रकृति और जीवन के लिए आवश्यक है पानी। पानी बचाना है तो जीवन बचाना है तो पानी बचाना होगा। पानी बचाना है तो आवासीय पानी को कम और नियंत्रित करना होगा। पानी महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को समझना होगा। विश्व जल संगठन के अनुसार व्यक्तिगत एवं घरेलू कार्यों के लिए उचित मात्रा शुद्ध, ग्राह्य, सुप्राप्त तथा क्रय करने योग्य पानी के लिए प्रत्येक व्यक्ति पात्र है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक देश का भी दायित्व है कि पानी एवं आवासीय पानी की बचत करें। शाकाहारी सरल सादगीपूर्ण जीवन, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे आवासीय पानी कम लगा हो, ठंडे पे डब्बाबंद खाद्य पदार्थ, स्वचालित एवं विलासिता वाले उत्पाद, रेडीमेड कपड़ों आदि का प्रयोग कम करते हुए आयात एवं निर्यात में आर्थिक लाभ नहीं बल्कि आवासीय पानी का चिंतन करते हुए जैसे अनेकानेक घटकों से सम्यक चिंतन एवं क्रियान्वयन करते हुए न केवल आवासीय पानी को नियंत्रित करेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी बचा सकेंगे।
1: छुपा हुआ जल। यदि आप वार्ता सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ के तहत, वार्ताकार थे डॉक्टर एमएल जांगीर। हम लोग इस कम होते हुए जल को बचा सकते हैं यदि हम छोटे छोटे बदलाव करें। जैसे पानी बचाओ जैसे छोटे छोटे गेम या प्रतियोगिताएं अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही परिवारजनों के साथ रखें। स्कूल प्रोजेक्ट अगर बच्चों के बनवाते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बनवाएं। घर में कुछ सरल नियम बनाएं, जैसे ब्रश करते समय नल बंद करना, इसे बच्चे बहुत जल्दी पकड़ते हैं। अगर हम सोचें तो हमारे आसपास का वातावरण बदल सकता है छोटी छोटी चीजों से, जैसे लीकेज मरम्मत, बाल्टी से धोना और छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। तो धीरे धीरे ये आंकड़ा बदलता जाएगा और हमारे लिए एक नया भारत हमें मिलेगा। एक विनम्र अपील, आज एक छोटा सा संकल्प के नले, कल से दांत साफ करते समय नल बंद रखना, बर्तन धोते समय पानी बचाना शुरू कर देंगे। अपने अनुभव और सुझाव आप भी भेज सकते हैं अगर आपके पास में कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं तो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, कहते हैं कि बस थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी आदत बदल सकती है हमारा कल।

यह आकाशवाणी बीकानेर का हमारे चैनल हेलियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर प्रातः के 8:45 होने को है। यह प्रस्तुत है सुगम संगीत।

जफर गोरखपुरी के लिखे इस गजल को आपने सुना पंकज उदास की आवाज में। सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से आप सुन रहे हैं।

215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजने वाले अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। विरीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। करौली जिले में भी केंद्र और राज्य सरकार की एमएसएमई क्षेत्र की योजनाएं आम जन के सपनों को पूरा कर रही हैं। अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: एमएसएमई योजनाएं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र करौली के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर जिले के हिंडौन, करौली और मासलपुर क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने

0: बालोतरा में होने वाली मुख्य सभा स्थल पर पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला मुख्यालयों में तकनीकी तैयारियां भी समय से पूरी करने को कहा है। उधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस नए टर्मिनल के शुरू होने से जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
1: और जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। पिछले वर्षों से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके चलते हुए हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ने लगे। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग की आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: प्रधानमंत्री आज से सेशेल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशेल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौ सैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में गांवों के समग्र विकास, प्रमुख ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा भी होगी। सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए किसानों को व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कल उदयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके लिए निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती तथा मशरूम उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। श्री गोयल ने उर्वरकों के पारदर्शी और वैज्ञानिक वितरण के लिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स फ्रेमवर्क को उदयपुर संभाग में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा। उन्होंने राजकीय कृषि महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को आधुनिक तकनीक से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने मशरूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। जयपुर में मातृभूमि अभियान के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों में वाटर रिचार्ज संरचनाएं बनाना अब अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल रीको के अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्हें अधिकारियों को इन संरचनाओं की ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैगिंग भी करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में 4-4 वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के शहीद और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम

0: दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर लिया गया है। स्मारक की त्रिआयामी दीवार पर भी उनका नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जवानों में नाम में पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं, जिनमें सार्जेंट सुरेंद्र मोगा वायुसेना के और राजस्थान से एकमात्र शहीद थे। सार्जेंट मोगा को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जा चुका है और वायुसेना ने नई दिल्ली में अपनी एक विंग का नाम सुरेंद्र हॉल रखा है। इस सम्मान पर शहीद के पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र ने गर्व व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः 9:10 होते हैं। लिए प्रस्तुत है लोक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे अब्दुल शक्कूर सुलेमानी की आवाज में कुछ लोक गीत।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत की सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा का सत्कार करते हुए आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज की स्वर साधना में हमारे साथ हैं प्रख्यात कलाकार मुंशी खान। तो आइए शास्त्रीय संगीत की इस दिव्य अनुभूति से एकाकार होते हैं। आज आप सुनेंगे मुंशी खान के द्वारा सितार वादन। आज मुंशी खान की प्रस्तुति होगी राग जय जयवंती। तो लीजिए प्रस्तुत है सितार पर बजाया राग जय जयवंती। कलाकार हैं मुंशी खान।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे सितार पर बजाया राग जय जयवंती। कलाकार थे मुंशी खान। तरले पर संगति राजेश सारदा की और तानपुरा पर थे नजर मोहम्मद। यह आकाशवाणी बीकानेर का नाम चल रहा है। मीडियम वेव 215.05 मीटर में 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 10 बजते हैं। ये प्रस्तुत है

0: बस एक क्लिक में कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहे।
3: एक जमाने से कहा

0: स्टाइल गया है जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड ग्रेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। फिल्म हम दोनों से गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की है। इस गीत को संगीत से सजाया है जयदेव ने और इसके बोल लिखे हैं साहिर ने। तो ये प्रस्तुत है मोहम्मद रफी की आवाज में हम दोनों फिल्म से गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए।

चौबीस साल और एक फानी सफर आकाशवाणी जिसमें संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का।

आकाशवाणी का 90 साल में करियर है। कोशिश रहेगी अच्छे प्रसारण का, हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: आइए जुड़िए आकाशवाणी।

Sinin silah filmde bir yapsın diye adamın beş kırıldı şokumar gelmez. इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने धुन बनाई है पंडित शिव कुमार शर्मा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने लीजिए अगला गीत प्रस्तुत है किशोर कुमार और आशा भोसले की इस गीत को लिखा है बेशम बाबा

अनपढ़ से लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने एक गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा

प्रधानमंत्री चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। सुनते हैं कार्यक्रम हेलो बीकानेर। फोन इन पर आधारित यह कार्यक्रम जिसके सत्रधार हैं श्रीमती प्रतिमा तिवारी, प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास के, संयोजन है श्री अमित सिंह का। तो सुनते हैं कार्यक्रम हेलो बीकानेर।

0: हेलो बीकानेर,
1: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोल हमारे चैनल से। श्रोताओं आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रोताओं कि हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज यानी बुधवार को दिन में 11 से 12 बजे की जाती है और इसका प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत प्रसन्नता के साथ। जी हाँ, क्या है ये प्रसन्नता? प्रसन्नता हमारे जीवन जीने का आधार है। जीवन बहुत अनमोल है और इसीलिए कहा जाता है कि हम इसे उत्सव की तरह जिएं। हर दिन हमारे लिए ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने मन में प्रसन्नता को जीवंत रखें। और कहते भी हैं कि प्रभु चरणों का अगर आश्रय हो तो उसमें प्रसन्नता चार चांद लगा देती है। जितना हम प्रभु की शरण में रहेंगे उतनी ही हमारी प्रसन्नता का अनुपात बढ़ता चला जाएगा। जीवन में कोई भी मनुष्य प्रसन्नता के बिना नहीं रह सकता, तो क्यों ना इस उत्सव को मिलकर बनाएं, जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम को आप और हम मिलकर बनाते हैं। तो आइए करते हैं आज के हेलो बीकानेर के इस उत्सव की शुरुआत और देखते हैं हमारे साथ हमारे पहले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम। खम्मा घड़ी
1: सा कौन बोल रहे हैं?
2: मैं जबलपुर एमपी से आपका नया श्रोता हूँ, अशोक सिंह बोल रहा हूँ। पहली बार लगा है।
1: अच्छा,
2: हो रही है, अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करने का।
1: अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। कि देखिए आप हमारे आज के पहले ही श्रोता हैं और वो भी एकदम नए श्रोता हैं हमारे। बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर के हमें कि आपने पहली बार फोन लगाया और देखिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं।
2: से जुड़ा हूँ आपके यहाँ से पहली बार।
1: अच्छा,
2: जयपुर में तो अभी गाने सुन रहा हूँ, जयपुर में 11 बजे से सुनता हूँ
1: जी। बहुत बहुत स्वागत हम एक बार फिर से करते हैं अशोक जी आपका। देखिए हमारे कार्यक्रम में हमें बहुत खुशी होती है जब हमारा कोई नया श्रोता हमारे साथ जुड़ता है।
2: हमको भी खुशी होती है अलग अलग स्टेशन से बात करने।
1: क्या करते हैं अशोक जी आप?
2: मैं रिटायरमेंट हूँ, 75 से रेडियो का दीवाना इनकम टैक्स।
1: आप रिटायर हो गई हैं और ऐसे में जो फुर्सत के क्षण हैं उसमें आप रेडियो का सहारा लेते हैं।
2: मगर अपना भी ख्याल रखते हैं बीमारी जी, थोड़ा डाइजेस्ट कर।
1: और देखिए इस समय जो मौसम गर्मी का चल रहा है, चाहे हम एमपी की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे कहीं की भी बात करें, अब तो गर्मी जो है वो सभी जगह कमोबेश एक जैसी ही पड़ने लगी है। है ना, 42 से 45, 40-45 के बीच में पारा घूमता है। ऐसे में राहत हमें तभी मिलती है जब कभी आंधी आ जाती है या हल्की फुल्की बरसात आ जाती है।
2: जी अभी तो कम हो गया, 40 से नीचे चल रहा था।
1: जी हाँ, अभी बीच में कुछ मौसम पलटा है, है ना।
2: इस बारिश हुई थी, अभी मानसून आने वाले की उम्मीद है।
1: हाँ, मानसून की उम्मीद कर तो रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि मानसून आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि पहुँचता कब तक है अपने यहाँ पे।
2: मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ।
1: जी हाँ, कहाँ से हैं यूपी से सर?
2: बरेली साइड,
1: शाहजहांपुर से हैं आप। चलिए देखिए, रहिए कहीं भी लेकिन जो भाषा है वो अपनी बहुत कुछ कह देती है हमारे बोलने का।
2: के लिए इंसान सब जगह जाता ही है।
1: इसमें अगर हम ये कहें कि उसके लिए तो इंसान देश का छोड़ विदेश भी चला जाता है। हाँ बताए।
2: तेरा चिंता मेरी चूड़िया दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ संताएंगे। जी लता जी, शंकर जय किशनकर संगी।
1: बहुत खूब आपने गा के सुना दिया अशोक जी। और देखिए अब आपने तो सुना दिया, सभी लोग मिलकर के अपन सुन लेते हैं ओरिजिनल जो ये गाना है उसको।
2: खम्मा घड़ी।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हरिओम सर, नमस्कार। मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। सुभाष
0: नमस्कार सुभाष जी, कैसे हैं आप? अच्छा, सर हरिद्वार तो
1: स्नान करते हैं, शाम को भी करते हैं। गंगा का पानी अमृत है, पानी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अगर घर पर भी आप 3 बार नहाओ ना, आधे गंगे आधे गंगे करो तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है,
0: फल मिल जाता है।
1: ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है आज 100% सही है।
0: जी बिल्कुल।
1: सृष्टि में 84 लाख योनियां है। भगवान ने केवल हाथ जो है मनुष्य को दिए हैं। जीव जंतु पक्षी जल में रहने वाले आकाश में उड़ने वाले किसी को हाथ नहीं दिए। मनुष्य को हाथ इसलिए दिए हैं कि वो भगवान की सेवा करे, माला बनाए, चंदन घिसे, माँ बाप की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे। ये हाथ से मिले हैं, सेवा करने के लिए मिले हैं, ना कि गलत काम करने के लिए।
0: सही है, बिल्कुल।
1: सेवा करेंगे तो फल पाएंगे, अगर सेवा नहीं करेंगे तो अगले जन्म में ही हाथ काट के पैर बना दिए जाएंगे, ऐसा शास्त्रों का कहा है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा आपने ये
1: बात। तो निवेदन यही है कि अपने हाथों से कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहे,
0: श्रेष्ठ कार्य।
1: अभी
0: करते
1: पिछले महीने पुरुषोत्तम मास मास का खूब भीड़ हुई हरिद्वार में, इतनी भीड़ की कि मैं एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। ये जो मैं पुरानी फिल्में 1950 से 60 तक के गीत सुनाता हूँ, इसकी एक दो विशेषता है तो मैंने पिछली बार बता दी थी।
0: जी, जी।
1: एक और विशेषता बता दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं ही बता देता हूँ। ये दो गाने मैं सुनाता हूँ ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हैं।
0: ब्लैक एंड व्हाइट है,
1: मैं हमेशा आपको जो गाने बताता हूँ वो ब्लैक एंड व्हाइट के।
0: तो आज का गीत बता दें फिर आप।
1: शर्त फिल्म का है, ना ये शांत होगा ना सितारे होंगे, हेमंत कुमार लता मंगेशकर का बेहतरीन गीत है। मेरे
0: आज भी आपने बहुत अच्छा गीत सुनने की फरमाइश की है, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी सर।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुनते हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से। श्रोताओं, आज बुधवार को हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसका प्रसारण होगा शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे। आप भी मिलाए हमें एक फोन और सुने अपनी पसंद का गीत और करें हमसे बातचीत। हमारे फोन नंबर है 0151252801 और 0151252802। आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो
1: तिवारी जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है, प्रोग्राम आपको सुनते रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं गांव खोखरा वाली से विनोद द्वारा सुनिंदन कर
0: जी, बहुत स्वागत है विनोद जी आपका।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत तहदिल से स्वागत करते हैं हम इस प्रोग्राम में। भी हमें भी एक हफ्ते के बाद ये प्रोग्राम सुनने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, देखिए हफ्ते का ये प्रोग्राम है और हमें भी बड़ी वो इंतजार रहता है कि कब हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं और हम इस कार्यक्रम को बनाएं, इसका प्रसारण करें, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कोई नए श्रोता जुड़ते हैं, पुराने वालों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो कार्यक्रम जो है वो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा सा बन जाए और लोगों तक पहुंचे, ये प्रयास रहता है।
1: बिल्कुल, नए श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: वो भी है, उनका भी वेलकम है प्रोग्राम में।
0: जी जी जी, तो विनोद जी मौसम में कुछ परिवर्तन आया है क्या?
1: बिल्कुल, मौसम तो बहुत सुहाना है, ऐसा लग रहा है सावन का महीना और वहाँ से पहले से आ गया।
0: अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये कि आपके यहाँ पे बारिश हुई है?
1: खूब बारिश हुई है।
0: अच्छा, खूब बारिश हुई है, अरे वाह। फिर तो फिर आपने खेती बाड़ी का बीजान बीजान भी शुरू कर दिया होगा?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर रखा है, नरमे की खेती है बहुत अच्छी करी है। अब 15-20 दिनों में लहराने लग जाएगी, सावन का महीना भी आने वाला है, वैसे सावन के महीने में फसलें बहुत अच्छी लगती
0: है, बहुत अच्छी होती है। मौसम इतना अच्छा होता है, खुशगवार, एकदम चारों तरफ हरियाली है ना, आनंद आता है इस मौसम में।
1: बिल्कुल बिल्कुल आनंद आता है।
0: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं विनोद जी?
1: सावन का ही गीत सुनना आया, सावन जयंती पे उनका पहले से ही हमने तो कर रखा है सावन।
0: अच्छा, आप तैयारी करके बैठे हैं कि सावन जब आएगा तब देखेंगे, गाना तो आज से ही सुन लेते हैं। जी विनोद जी,
1: बहुत नाम लेने में जी।
0: हाँ जी लीजिए।
1: विशाल बारा सा, विकास बारा सा, रचि बारा सा, शगुन बारा सा।
0: जी, आपकी परिवार के सभी सदस्यों का हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में।
1: ओके बहन जी,
0: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से। श्रोताओं ये देखते हैं हमारे साथी कौन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं वृंदावन कॉलोनी से राजेंद्र विद्वांकर बोल रहा हूँ।
0: राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: जी। राजेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैडम?
0: बढ़िया, एकदम स्वस्थ, एकदम आनंद है, तभी तो आप लोगों से बातचीत करने के लिए आ गए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी जी। राजेंद्र जी मैं कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर रही थी कि प्रसन्नता जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रसन्न रहने से इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब अपन किसी के सामने मुस्कुरा के पेश होंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही।

0: कि देखिए इंसान को क्या याद रहता है, वो चेहरा या आपकी वाणी, ये दो चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप इससे भी मिल रहे हैं, कहने को चाहे आप सामने हैं, चाहे आप कपड़े आपने कैसे भी पहने हैं, लेकिन आपके चेहरे पे हंसी है और आपकी वाणी में मिठास है, तो हर व्यक्ति आपको उसी रूप में याद करेगा।
1: बस ये जो अपने वाणी है ना, अपने किसी से मिलते हैं ना तो विनम्रता से मुस्कुराते, तो ये यही प्रभावित करने की बात होती है सबसे ज्यादा।
0: सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और देखिए आप और हम भी तो इस वाणी के ही कमाल से जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आप बिल्कुल।
0: तो सर वाकई
1: मैं बताऊँ आपको, मेरी मम्मी 89 ईयर की गुजरी है, पर सब कहते थे, कह रहे मम्मी हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा मुस्कुराते थे, एकदम हसमुख चेहरा था उनका।
0: बिल्कुल। और राजेंद्र जी देखिए, अगर हम बात करते हैं कि खुशी और गम की या अच्छे बुरे दौर की, तो ये हर किसी के जीवन में आता है।
1: हाँ ये तो
0: है ना,
1: कभी खुशी कभी गम, ये तो है ही, जीवन
0: चलता ही रहता है। लेकिन ऐसे में भी, हाँ ऐसे में भी अगर हम प्रसन्न रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर।
1: हाँ बिल्कुल,
0: बहुत अच्छी
1: कष्ट आए उसे मुस्कुरा के मुकाबला करेंगे ना तो वो निकल जाएगा।
0: क्योंकि उदास रहेंगे तो भी कष्ट तो रहेगा।

0: ये हर किसी के जीवन में आता है।
1: हाँ ये तो
0: है ना,
1: तो कभी खुशी कभी गम, हाँ, ये तो है ही,
0: चलता ही रहता है। लेकिन ऐसे में भी, हाँ ऐसे में भी अगर हम प्रसन्न रह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर।
1: हाँ बिल्कुल,
0: बहुत अच्छी
1: कष्ट आए उसे मुस्कुरा के उसका मुकाबला करेंगे ना तो वो निकल जाएगा।
0: क्योंकि उदास रहेंगे तो भी कष्ट तो रहेगा ही रहेगा,
1: तो
0: मुश्किल और बढ़ाएगा। बल्कि अगर हम उदास रह करके उस जीवन उस समय को निकालेंगे तो, और अगर हंसी खुशी निकालेंगे तो वो समय हमारा आसानी से कट जाएगा।
1: चेहरे पे जोड़ियां भी नहीं पड़ती जो मुस्कुराते
0: रहते हैं
1: ना
0: हमेशा। ये तो आपने बहुत अच्छी टिप दे दी भाई, ब्यूटी टिप्स दे दी आज आपने। चलिए कोशिश करते हैं कि सभी मुस्कुराते रहें, आप सब मुस्कुराते रहें, हमारे जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं ये कहेंगे कि दुनिया का हर इंसान मुस्कुराता हुआ ही दिखे।
1: मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था, अपने सुभाष जी को मैं इस मन से प्रणाम करता हूँ, और वो जो संदेश देते हैं ना उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है जीवन के अंदर।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छे संदेश होते हैं उनके। और जी हाँ, और बहुत पुराने श्रोता दिग्गज श्रोता है हमारे आकाशवाणी के सुभाष जी। जी
1: बिल्कुल, नाम लू?
0: हाँ जी सर लीजिए।
1: सुरेश जी गहलोत है, वो मेरा प्रिय मित्र है।
0: जी हाँ, आप हमेशा उनका नाम लेते हैं और हम उनका भी स्वागत कर लेते हैं, और हम ये उम्मीद भी करते हैं राजेंद्र जी कि आप जब भी इस प्रोग्राम को सुनते होंगे तो सुरेश जी आपके साथ बैठ करके जरूर सुनते होंगे।
1: जरूर जरूर
0: जी जी,
1: आपकी मेमोरी बहुत शार्प है मैडम
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हम अपनी प्रार्थना में हम ईश्वर से हमेशा यही कहते हैं कि जब मन व्याकुल हो तो मुझे धैर्य देना, जब राह कठिन हो तो मुझे साहस देना, जब मैं भटक जाऊं तो मुझे अपनी भक्ति का मार्ग दिखाना। आपकी कृपा ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और यही शक्ति श्रोताओं हमारे तन मन धन जो भी चीजें हैं सब पर लागू होती है, क्योंकि उनकी अपार दृष्टि के बिना हम अपना जीवन संभव नहीं कर सकते। और इसीलिए हमेशा ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा अपना हाथ जो है वो हमारे सर पर बनाए रखें और उनकी कृपा से हमारा जीवन निरंतर प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ता रहे। ये प्रसन्नता हमारे जीवन में बहुत अनमोल है, जैसा कि हमने पहले भी बातचीत की है। तो आइए देखते हैं अब हमारे इस कार्यक्रम की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए कौन साथी जुड़े हैं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: धीरज लबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात जी।
0: गुजरात से धीरज जी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद
0: जी। धीरज जी, गुजरात में कैसा मौसम है, क्या चल रहा है अभी?
1: मौसम में मोर टोका कर रहे हैं बारिश के लिए।
0: अच्छा,
1: बारिश संता कुकड़ी खिल रही है।
0: अच्छा, आ नहीं रही है?
1: आ नहीं रही है
0: जी। लेकिन सुनने में अब आ रहा है कि देखिए धीरे धीरे मानसून जो है वो हमारी ओर आ रहा है, तो उम्मीदें कुछ ज्यादा बन रही हैं।
1: जी, मुंबई में दस्तक भी ऐसा लगता है, गुजरात के बाद मेरे ख्याल से राजस्थान में भी बारिश दो तीन दिन में आ जाएगी ऐसी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मुंबई के नजदीक है तो आपके पास पहले आएगी।
1: बिल्कुल
0: जी, तो आनंद लेंगे।
1: पहले भी परंपरा है, देखा जाए तो जो सुबह का मौसम बनता है दीदी
0: जी,
1: वो बारिश कभी नहीं लाता, कभी कभार ही लाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और शाम वाला जो मौसम बनता है
0: जी,
1: बारिश अचूक लाता है, तो मेरे को लगता है यानी कल या परसों बारिश आ जाएगी।
0: अच्छा अच्छा, अब धीरे धीरे शाम को जो है वो मौसम बनने लगा है बारिश का।
1: तो और ये हमारे पूरे पुराने जो बुजुर्ग है कहते थे कि शाम वाली जो मौसम होती है ना, बारिश सबसे खुलाती है
0: जी। और देखिए, बड़े लोगों की कही हुई बात तो हमेशा जो कहते हैं कि हम सत्य ही होती है, और उनका अनुभव बोलता है कि वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और जो पुरानी जो परंपरा थी जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, कहावत है यानी खेती कार्य है, यानी बहनों की जो रस्में है, बहनों के जो कार्य है, तो वो बातें कभी कभार हम हमारे जो बुजुर्ग जो दादी है जो भी हमारे काकी है वो कहती, तो हमें भी लगता है कि ये बातें हम आगे वाली पीढ़ी को भी कहें तो वो भी यानी हो सके तो पुराने कार्य कर सके।
0: बिल्कुल, जो नई जनरेशन है उसको पुरानी चीजों को बताना भी जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे करके देखिए पीछे जो पुरानी चीजें थी सब छूटती चली जा रही हैं।
1: बिल्कुल, हमारा जो पहनावा था जो हमारी रबारी बिरादरी जैसे कई ऐसी बिरादरी जो पहनावा एकदम यानी सुंदर यानी बहुत अच्छा पहनावा था, लेकिन हमने वो पहनावा त्याग करके अभी आधुनिक युग के पहनावे पहनते हैं, तो हमारा पहनावा अभी हमारे पश्चिम कल्चर में वो पहनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने हमारी जो संस्कृति है वो पीछे छोड़ दिए, बहुत अच्छी बात नहीं हमारे लिए।
0: अच्छी नहीं है, बिल्कुल संस्कृति के संग जुड़े रहना। और देखिए गुजरात की और राजस्थान की अगर अपन एक बात करें पहनावे की, तो एक खास बात दोनों पहनावों में ये है कि जो कपड़ों का जो रंग होता है वो इतना चटक और इतना खिला हुआ होता है कि उसका नूर अपने आप चेहरे पर झलकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभार धोती और हमारा जो पोशाक पहनते हैं तो हमारे कई भैया बोलते यही पोशाक आप रोजाना पहनो तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी बिल्कुल, वो रंग बिरंगे फूलने लगे हुए रंग बिरंगी डोरियों से उनपे। और देखिए अगर एम्ब्रॉयडरी की बात करें कढ़ाई की, तो कच्छ की कढ़ाई आपके गुजरात की, राजस्थान में हमारे बांधनी की जो बंदेश का जो काम होता है वो है, इस तरीके की जो चीजें हैं ये वाकई में आप सही कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो छूटती चली जा रही है।
1: बिल्कुल, और जो भरत काम बहने करती थी बेनमून रहते थे, उसमें जो दर्पण होता है आईना होता है, छोटे छोटे आईने
0: कांच का काम
1: बहुत अच्छा लगता
0: था, बहुत अच्छा लगता था। तो सही बात कह रहे हैं यहाँ के युवाओं को, हमारे जो है इन परंपराओं का ध्यान होना चाहिए, संस्कृति का ध्यान होना चाहिए।
1: तो ये संस्कृति है जतन आकाशवाणी करती है, उसका हमने कई बार कई कार्यक्रम में हमने सुना है, यानी कई कई बातें आकाशवाणी उल्लेख करता है, और कई कई मेहमानों को आगंतुकों को बुला के भी पुरानी बातें को शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आकाशवाणी एक हमारी एक माध्यम है जिसके जरिए से हमें पुरानी बातें हमें सुनने को मिलती है दीदी।
0: हाँ, और देखिए आकाशवाणी है जन जन की वाणी, तो ये लोगों तक पहुँचती रहे, इसी प्रयास में नित नए प्रोग्राम हम लोग बनाते रहते हैं और लोगों तक पहुँचाते रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: तो धीरज जी आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?

0: अमराज सिंह का गाना है और गाने के बोले नीले गगन के चले महेंद्र कपूर जी ने गाया। मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी लगती है और आप जो भी इसे आप हमसे जो राय लेती है और आप भी जुड़ता है बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत धन्यवाद नीरज जी, आप हमसे जुड़े रहे।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं ये देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो
1: हाँ जी
0: मंसूर अली जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम में।
1: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। मंसूर जी आज का संदेश बताएं।
1: जी आज का संदेश ये हम बाइक ड्राइव करते हैं या मतलब फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं तो उस समय हम जो नियम है उनका पालन करें। सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना पालन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए पालन बनाया गया है।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि हमारा सुरक्षा इसी में है कि हम ये लगा के चलेंगे तो रहेंगे और परिवार का भी मतलब पूरा पूरा ख्याल रख सकेंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो भी सुरक्षा के नियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनका पालन करना हमें जरूरी है। देखिए बीकानेर शहर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नियमों की जो है वो कई बार बड़ी अनदेखी होती है।
1: हेलमेट से बचने के लिए मतलब गाड़ी बताते रह जाते हैं
0: जिंदगी का सवाल है। और देखिए आप नुकसान आपको होगा उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। और एक और सबसे अच्छी बात मंसूर जी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी आपके

0: से अपनी बातचीत के माध्यम से आम लोगों तक कि जब भी वाहन चला रहे हैं, चाहे दुपहिया चौपहिया कोई सा भी है, तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें।
1: ये सबसे अच्छी बात है मैम, खास ध्यान रखने पूर्वक बात है।
0: कई बार हम देखते हैं कि जो खासकर युवा वर्ग की बात हम करते हैं, मोबाइल को कान पे लगाया और ऐसे कंधा टेढ़ा करके उसको पकड़ लेते हैं और फिर बाइक जो है वो चला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, आप चाहे कितने भी सतर्क रहें, लेकिन कहीं पर भी कई बार फोन में कई ऐसी बातें भी होती हैं जो मजाक की भी होती हैं, कई बार एकदम से हमें कुछ और भी बातें सुनाई दे जाती हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो उस तरफ चला जाता है और हम वाहन चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। सही बात है ना, कि कहा भी गया है कि जान है तो जहान है, है ना। और देखिए वैसे भी हम देख रहे हैं कि कितनी जनहानि हो रही है, जगह जगह पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और आगजनी की दुर्घटनाएं कितनी हो रही हैं। अभी परसों में जो हादसा हुआ है ना, बहुत बड़ा हादसा, कितने युवा बच्चे थे उस हादसे के अंदर जो मतलब काल कल्वित हो गए, है ना। तो इस तरीके के जी हाँ, लोगों तक ये संदेश आप सबके साथ हम यही पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए, जितना सुरक्षित रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन को लंबा जी पाएंगे। नियम इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनका पालन किया जाए। हम और आप सभी मिलकर के नियमों का पालन करेंगे ना मंसूर जी, तभी कुछ बात बन पाएगी।
1: जी
0: है
1: ना, नाम मिलूं मैं?
0: जी हाँ लीजिए, सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बात में रहते हैं
0: ये जुड़ाव, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये यारी दोस्ती का जो जुड़ाव है ना, ये हमेशा बना रहना चाहिए।
1: जी
0: आप बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मुझे पिछला जीवन ये गीत सुनना है, प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे।
0: हम ये कहेंगे कि आपकी प्यारे दोस्तों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही है?
1: मैं राधेश्याम कटारिया, श्री कसूपुर जिला, श्री गंगना से बोल रहा हूँ।
0: जी राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम
0: जी। बताएं राधेश्याम जी,
1: आज मैं गीत सुनना चाहता हूँ, रोकते हुए आते सब रास्ता हुआ जो जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर।
0: मुकद्दर का सिकंदर जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है ये, कि रोते हुए आते हैं सब, ये सच्चाई भी है। और ये बहुत बड़ी बात है, अगली लाइन जो है कि हंसता हुआ जो जाएगा।
1: हाँ जी मैडम,
0: कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरा जीवन अपना इतना संघर्ष में निकालता है, इतना जिंदगी उसकी तनाव भरी होती है, नए नए उसके जीवन में दौर आते रहते हैं कि उसको शायद हंसने का मौका ही नहीं मिल पाता और वो यूं ही अपना जीवन बिता के चला जाता है।
1: मैडम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कभी भी आदमी को आस नहीं छोड़नी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: कभी ना कभी तो दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा,
0: ये निश्चित है। ये तो निश्चित ही है कि अगर दुख है तो उसके बाद सुख आएगा ही आएगा, और कहते हैं ना कि श्वास है तो आस है।
1: हाँ जी मैडम,
0: है ना। तो अगर आस नहीं छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण हमारे अंदर जगमगाती रहेगी, और इसी उम्मीद के भरोसे हम अपना आने वाला समय जो है वो पूरा अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं।
1: हाँ जी मैडम, ये तो ठीक है जी, ये तो।
0: हाँ बिल्कुल राधेश्याम जी, आप जैसे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और देखिए नित नए संदेश हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आस नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है,
1: बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं
0: आस पे। बिल्कुल, आस ही नहीं होगी तो फिर जीवन तो निराश ही हो जाएगा।
1: जी मैडम,
0: है ना। उम्मीद कहते हैं ना कि हम रोज उठते हैं और रोज एक काम की उम्मीद करते हैं कि आज हमारा ये काम पूरा हो जाए, भगवान जी हमारा ये काम पूरा हो जाए, ईश्वर का ध्यान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे, और वो काम जब पूरा हो जाता है तो अगले दिन फिर हमारी नई उम्मीद हो जाती है एक। तो इंसान तो सर, हाँ,
1: उम्मीद के सारे तो आदमी जिंदा है।
0: जिंदा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद के साथ साथ हमारा रोज दिन जो है वो पूरा निकल जाता है 24 घंटे का, और हम फिर से नई उम्मीद जगाते हैं, और ऐसे ही करते करते करते करते हमारे अपनों की उम्मीदें अपने से जुड़ती चली जाती हैं, फिर कुछ समाज की उम्मीदें होती हैं, कुछ देश की उम्मीदें होती हैं, यूं करते करते देखिए एक दूसरे से जुड़ाव बनता चला जाता है।
1: जी मैडम
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने आज कही, और देखिए आपके माध्यम से ये संदेश हमारा सभी तक पहुंचेगा।
1: थैंक यू मैडम।
0: राधेश्याम जी, आइए आपकी और आप साथियों की पसंद पर सुनते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत, और आपने हमें फोन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है बुधवार को 11 से 12 बजे और इसका प्रसारण होता है शनिवार को 11 से 12 बजे। आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से और बन सकते हैं हमारे श्रोता। आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्कार लक्ष्मी नारायण जी, कैसे हैं आप? जी बस बढ़िया है सर, आनंद है। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये दोस्ती फिल्म का है मैडम जी।
0: दोस्ती फिल्म का गीत है ये और बहुत अच्छी पिक्चर थी और दो दोस्तों की ही कहानी थी ये।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो दोस्तों की कहानी थी और बुरे व्यक्ति ने काम आए और अच्छे व्यक्ति ने मुंह नहीं फेरा।
0: हाँ बिल्कुल, और देखिए दोस्ती का मतलब यही है, कहते हैं ना कि सारे रिश्ते नातों में कहीं ना कहीं बुराव छिपाव झूठ साँच होता है, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा है जिसमें कहीं किसी से कोई भी बात छुपाई नहीं जाती, जो है जैसी है बेधड़क कह देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल कह देते हैं और शुद्ध की बात कोई भी हो उसको सरे सरे कर सकते हैं।
0: दोस्ती है जो सबसे पहले आके खड़े होते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और जब बचपन की दोस्ती होती है वो तो सर बहुत ही अमूल्य होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अमूल्य होती है, इसका कोई अंत नहीं है।
0: अंत नहीं है स्कूल के टाइम की अगर हम बात याद करते हैं, कॉलेज के टाइम की बात अगर याद करते हैं, तो कुछ चुनिंदा दोस्त तो ऐसे हैं जो मतलब जिनके बिना शायद हमारे कोई भी काम पूरा नहीं होता।
1: बिल्कुल नहीं होता, अभी तक जो हमारे बचपन में दोस्त है अभी तक जो भी जैसे मान लो कुछ थे 20-25 उनमें से कभी 10-15 ऐसे है जो रोज मिले जुले नहीं रहते।
0: हाँ और कितना अच्छा लगता है ना सर जब सब मिलते हैं, चाहे पेड़ के नीचे मिले हैं, चाहे कहीं गट्टे पे बैठ करके बातचीत करें, कहीं चाय की थड़ी पे बैठ के बातचीत करें, लेकिन वाकई में आनंद बहुत आता है।
1: क्रिकेट मैच खेल रहे हैं सब पूरे में यादें रहती है।
0: हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो क्रिकेट वगैरह अभी भी खेलते हैं आप लक्ष्मी नारायण जी?
1: बच्चों के साथ खेल लेते हैं, लग जाए हैं। मेरी यही सिचुएशन है, जो बच्चे और है ना उनको पहला गिफ्ट नहीं देता हूँ बैट और बॉल।
0: बैट और बॉल जी, जो आपकी बचपन की जो यादें हैं आप उनके साथ में इनके साथ जी लेते हैं।

0: एक सीख देता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा खेल कूद में भाग लें।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आजकल क्या हो गया कि मोबाइल का जमाना है, तो बच्चे भी जो है वो 24 घंटे घर के अंदर मोबाइल से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे में जब हाँ बाहर खेलने जाना, बाहर की मिट्टी, बाहर की दौड़ भाग, बाहर की धूप, बाहर का जो और बच्चों का जो वातावरण है, वो बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
0: अभी बोले पसीना आता था और पानी ठंडा पीते थे, मटके का घड़े का पानी के पीते थे, उसमें आनंद आता था। अभी जैसे आप कह रहे हैं ना, उस मोबाइल में बैठे रहे ठंडा पानी पी लिया और वापस खेलना शुरू कर दिया।
1: और देखिए लक्ष्मी नारायण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें पसीना तो आता ही नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं आता ही नहीं है।
1: और कहीं ना कहीं ये भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है।
0: नुकसानदायक है, बाहर की हवा, बाहर की धूप, और लगनी चाहिए, और घर में भी हल्की सी धूप आनी चाहिए।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात लक्ष्मी नारायण जी आपसे भी, और आपने गीत हमें बता ही दिया है। दोस्ती फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत, और आपने हमें फोन किया इसके लिए बहुत शुक्रिया।
0: ठीक है,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू,
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी गासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी मैडम
0: जी,
1: और आपका कार्यक्रम फोन कर रहा हूँ मैडम। और यहाँ तो मौसम गजब किया मैडम।
0: अच्छा,
1: धूप कर रखी है, उसके बाद अभी बादल कर रहा है मैडम। धूप अच्छा। बादल धूप बादल, कल थोड़ा अच्छा। पानी गिरा उत्तर साइड में, ये मतलब इस टाइम का मौसम चल रहा है। बादल बहुत जस्ट कर रहा है मैडम
0: जी,
1: बादल गिर गया है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन गिरेगा पानी।
0: जी बिल्कुल, तो पानी गिरने की शुरुआत हो गई है, यानी कि हम यूँ कहें कि मानसून ने आपके यहाँ पे दस्तक दे दी है
1: लेकिन ठीक से पानी नहीं गिर रहा है। लेकिन आजकल 4 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर में अब पानी जम के गिरे,
0: अच्छी बारिश होने लग जाएगी। जी हाँ, बताएं इंद्रभान जी, आपके वहाँ पे मौसम के हिसाब से कौन सी फसलों का जो है वो बीजान होता है, कौन कौन सी फसलें आपके यहाँ पे होती है?
1: यहाँ पे मैडम ज्यादातर लोग लगाते हैं धान का, ज्यादा खेती होता है धान, क्योंकि इसमें बरसात के समय लोग कृषक लोग खेती करते हैं।
0: जी,
1: सबसे ज्यादा धान की खेती बहुत ज्यादा होता है छत्तीसगढ़ में।
0: अच्छा, तो धान यानी कि जैसे आप कह रहे हैं चावल का खेती होता है, तो चावल की भी बहुत सी किस्में हैं सर?
1: जी, धान की बहुत किस्में हैं।

0: सिंदूर लगाते हैं लोग
1: जी,
0: जीरा कुंड, विष्णु भोग, लक्ष्मी भोग,
1: अच्छा
0: उसमें चावल, ये सब बहुत किस्म का चावल लगाते हैं यहाँ किसान भाई लोग
1: जी। तो आप भी खेती बाड़ी की तरफ कुछ रुझान रखते हैं?
0: मैडम मैं तो सर्विस में रहता हूँ मैडम, तो खेती बाड़ी में तो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्या है कि खेती बाड़ी घर के लोग तो वही अधिया में देते थे
1: जी। चलिए अच्छी बात है इंद्रबान जी, आपने कहा कि खेती बाड़ी जो है वहाँ पे मुख्यतः जो है वो धान की होती है, और इसी के साथ साथ और भी बहुत सी खेती तो खैर होती है, लेकिन मुख्य फसल जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में धान की होती है। हमें बहुत खुशी होती है इंद्रबान जी जब इतनी दूर दूर से हमारे हेलो बीकानेर कार्यक्रम के श्रोता जुड़ते हैं, और खास बात यह रहती है कि कई बार नए श्रोता भी जुड़ते हैं तो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं
0: जी,
1: क्योंकि आप जानते हैं इंद्रबान जी की श्रोताओं के बिना किसी भी कार्यक्रम की कोई भी जो है वो गरिमा जो है वो श्रोताओं के बिना नहीं हो पाती, तो श्रोताओं का होना आकाशवाणी के लिए बहुत गर्व की बात है
0: जी,
1: है ना। तो इंद्रबान जी आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: इसका प्रसारण कब किस दिन होगा मैडम?
1: जी हाँ, देखिए हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कब होती है? बुधवार को दिन में 11 से 12 बजे, और इसका प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे।
0: सबसे पहले गीत आपको के निमित्त से आपको पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी बीकानेर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी शैली को, बीकानेर आकाशवाणी में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारी को, हेलो एक्टर रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोताओं को जुड़े को मेरे पहुंचाने के धन्यवाद। बहुत अच्छा गीत है, पहली बार बज रहा है, सुनिएगा दिल खुश हो जाएगा
1: जी। बहुत शुक्रिया आपका, हमने फोन किया
0: जी,
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो बीकानेर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हमारे एक नए श्रोता और साथ में हमने बातचीत की अपने पुराने श्रोताओं से, उनकी पसंद के गीत, उनके मन की बातें, कुछ संदेश जो आप और हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आकाशवाणी बीकानेर की पूरी टीम का सहयोग रहा। प्रस्तुति बरखा थानवी व्यास की, संयोजक थे अमित सिंह और मैं आपके साथ सूत्रधार प्रतिमा तिवारी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: सम्मिलित कार्यक्रम हेलो बीकानेर, प्रस्तुति श्रीमती बरकाथारी व्यास, संयोजन अमित सिंह, सत्रार्थी श्रीमती प्रतिमा तिवारी। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के भोलामारु चैनल से बोल रही हैं। 12 बजने को है, सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए।

0: दौरान वे सेशंस के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशंस भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षय वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हो चुके हैं। सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात 8 बजे आप सुनेंगे बीकानेर के सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर होंगे महेश उपाध्याय के। रात 8:30 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे लोक संगीत और 8:45 पर दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे समाचार संध्या। रात 9 बजे न्यूज़ @9 और 9:15 पर फिल्म संगीत।

के 30 मिनट पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम विज्ञान भारती। रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कलाकार होंगे प्रभात मुखोपाध्याय।

सात बजे सुन पाएंगे ग्रामीण मित्र अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज की प्रस्तुति देंगे रामस्वरूप बिश्नोई और कुंजीलाल स्वामी।

शाम 5:05 पर युवा मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। आज की प्रस्तुति देंगी दिशा भाटी और शारदा नैर। शाम 6:00 आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। 6:05 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 पर जयपुर केंद्र से प्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी। 6:45 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे स्टूडियो से फिल्म संगीत। 2 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज। 2:15 पर दोपहर समाचार।

एक बजे आप सुन पाएंगे दिल्ली माफ कीजिएगा जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार, एक बजकर के 5 मिनट पर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति देंगी साक्षी गोस्वामी और गीता शर्मा।

व्यापसंघ इतिहास पर संगीत होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10 होने को है। सुनते हैं सुगम संगीत।

सुगम संगीत में भी आप सुन रहे थे मिताली सिंह को। सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल, स्वर है भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का।

आप सुन रहे थे पंकज उदास को। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियो 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के बोला मरु चैनल से बोल रहे हैं। 12:40 होने को हम सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म नसीब से अभी आपने गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के भोला मरुचरण से बोल रहे हैं। एक बजने को है, सुनते हैं जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: पूरा हो गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में बड़ा सुधार होगा। उन्होंने गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृत 4 अतिरिक्त जलाशयों में से फलसू जलाशय में पानी भरने की शुरुआत होने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के लोकार्पण के साथ ही विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस विस्तार के बाद अब यहां एक साथ 12 विमान खड़े हो सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग को वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भर्ती के लिए 29,86,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से जारी वार्षिक कार्य रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या अब तक किसी भी एक वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या में सबसे अधिक है। वर्ष 2023-24 में आयोग को 20,24,000 आवेदन मिले थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग ने वर्ष 2024-25 में 72 प्रतियोगी परीक्षाओं और 316 साक्षात्कार आयोजित कर विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए 2,538 युवाओं का चयन किया था। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। विभिन्न जिलों में अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 दिन के इस अभियान के दौरान पहले दिन बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई जाएगी, वहीं अगले 2 दिन घर घर जाकर पोलियो रोधी दवा की खुराक दी जाएगी। इसी सिलसिले में आज झुंझुनू और जैसलमेर में जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। झुंझुनू के CNHO डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने शहीद पार्क से रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि जिले में अभियान के लिए 1,551 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जैसलमेर में भी गड़ीसर चौराहे से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें नर्सिंग कर्मियों और आशा सहयोगियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि सेशल्स विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हमेने के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान वे सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.95 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रही हैं। 1:05 हो चुके हैं। आरंभ होता है महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति दे रही हैं साक्षी गोस्वामी और गीता शर्मा।

0: स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में और स्वागत कर रही हैं आपकी अपनी दो सखियां मैं साक्षी गोस्वामी
1: और मैं गीता शर्मा।
0: तो कीजिए स्वीकार हमारा स्नेह भरा नमस्कार।
1: तो बताओ साक्षी कैसी हो तुम और हमारी सखियों आप भी बताइए कि कैसी हैं आप।
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ गीता, तुम बताओ कैसी हो, काफी दिनों बाद अपना मिलना हुआ ना।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे उस पार जो श्रोता हमें सुन रहे हैं ना वे भी बढ़िया होंगे। लेकिन साक्षी तुम्हारी आवाज ना कुछ और ही बयां कर रही है।
0: अच्छा
1: है ना सखियों, सही कहा ना मैंने, लग ही नहीं रहा ना कि ये हमारी वही साक्षी है जो सभी के साथ गर्मजोशी से मिलती है, खिलखिलाती हुई मुस्कुराती हुई। तो साक्षी चलो जल्दी से हम सभी को अपनी उदासी का कारण बता दो।
0: मतलब कि तुमसे कुछ भी नहीं छुपता ना कुछ खास नहीं है, बस वही है घर परिवार की बातें।
1: अच्छा।
0: उनकी ताने आलोचनाएं और जिसके चलते मन आज कुछ ज्यादा ही व्यथित हो गया है।
1: तो ये बात है, लेकिन ये समस्या साक्षी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है बल्कि हर महिला की है। आए दिन में घर परिवार में हम सभी को ऐसी बातों से दो चार होना पड़ता है और ये बातें कभी कभी ना मन को बहुत दुख भी पहुंचाती हैं, जैसे कि आज तुम्हारा हाल है ना। लेकिन हमें इनके आगे झुकना नहीं चाहिए। ताने सुनकर क्रोधित होने या निराश होने की बजाय हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। और यदि इन कटु वचनों को या आलोचनाओं को सही दृष्टिकोण से अगर हम देखें ना तो वे हम सभी के लिए सीख और प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं।
0: मतलब तुम कहना चाहते हो कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना।
1: सही, क्योंकि कोई भी हमारी आलोचना ना तभी करता है जब हमें कोई कमी होती है। तो सखियों आलोचना अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का अवसर भी देती है और जो व्यक्ति कठिन शब्दों से टूटने के बजाय उनसे सीख लेता है वही जीवन में रिश्तों से जुड़ा रहता है और सफल भी बनता है।
0: बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि हमें ये समझना भी चाहिए ना कि हर व्यक्ति की सोच और अपेक्षाएं अलग अलग होती
1: हैं। बिल्कुल सही,
0: इसलिए दूसरों की बातों को मन पर लगाने के बजाय है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, है ना। हम अपने कामों को पूर्णता देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कार्यों और उपलब्धियों से उनको उत्तर देते हैं तो आलोचनाएं धीरे धीरे अपना महत्व खो देती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही है साक्षी। तो सखियों अपनी कामयाबी का शोर शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से दीजिए, लेकिन ये परिणाम ना तभी निखर कर आएंगे जब व्यर्थ की बातों को आप दिमाग से निकाल देंगे, उन्हें पोषित नहीं होने देंगे। पता है कुछ लोगों की आदत होती है साक्षी कि वो साल दो साल या कई साल पुरानी बातों को ना मन से लगा करके बैठ जाते हैं और इससे क्या होता है न केवल हमारे रिश्ते खराब होते हैं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगती है।
0: बिल्कुल बहनों, जितनी देर तक आप अपने बीते हुए कल की यादों को पकड़े रहेंगे उतनी ही देर तक आप अपने आने वाले कल की खुशियों से दूर रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: जो वक्त अच्छा था या बुरा था जैसा भी था वो बीत गया ना, तो उसको जाने दीजिए और जो आने वाला है उसको अच्छा बनाने की तैयारी कीजिए।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और ये वक्त ना साक्षी और खूबसूरत तब भी बन जाता है जब साथ हो हमारा प्यारा साथी, हमारा हमसफर, हमारा रेडियो और उनमें गूंजते मधुर तराने तो हमारे मन को और अटूट बनाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।
0: बिल्कुल।

0: हफ्ते पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: गीता, हम अक्सर सोचते हैं ना कि उद्योग यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हजारों कर्मचारी और करोड़ों का कारोबार, लेकिन सच तो ये है कि हमारे आसपास ऐसे हजारों छोटे छोटे काम हैं जो न केवल लोगों को रोजी रोटी का सहारा देते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। इन्हें ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भी कहा जाता है।
2: सही कह रही है साक्षी, तुम हर बड़ा कारोबार कभी ना कभी एक छोटे से विचार से ही तो शुरू हुआ था। और ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है क्या, ये प्रश्न भी अक्सर हमारे मन में उठता ही होगा। तो सखियों, आपको बता दें कि सूक्ष्म उद्योग यानी बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया गया व्यवसाय, जैसे घर से पापड़, अचार, अगरबत्ती, सिलाई कढ़ाई का काम, ये सभी सूक्ष्म उद्योग के अंदर हैं।
1: बिल्कुल। और लघु उद्योग यानी कि ऐसा व्यवसाय जिसमें काम थोड़ा सा बढ़ चुका हो, कुछ कर्मचारी हो और उत्पादन भी थोड़ा सा अधिक हो, और जैसे कि छोटी बेकरी, फर्नीचर बनाने की यूनिट या कपड़ों की छोटी सी फैक्ट्री।
2: और जो व्यवसाय दोनों से बड़े हो ना, जहाँ अधिक मशीनें हो, कर्मचारी हो, उत्पादन भी हो, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी कंपनी ना कहलाए,
1: वो मध्यम उद्योग कहलाया जाता है ना। शायद हमारी की बातें बहनों को कंफ्यूज कर दें गीता, तो सरल उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि आप अपने घर की रसोई से मसाले बनाकर बेचना शुरू कर देती हैं, तो शुरू में तो ये आप अकेले काम करती हैं, है ना, तो ये हो जाता है लघु उद्योग। और फिर धीरे धीरे आप महिलाओं को काम पर रखती हैं, फिर एक छोटी सी मशीन भी ले आती हैं, और फिर कुछ सालों के बाद आपका छोटा सा व्यवसाय पूरे जिले में फैल जाता है। यही एक सूक्ष्म उद्योग से लघु उद्योग बनने का सफर है, और यही छोटे छोटे से प्रयास जो होते हैं ना, वो देश की बड़ी ताकत बन जाते हैं।
2: तो बहनों, आपको ये बात समझ में आई होगी अब जो साक्षी ने बताई। आगे हम आपको बताते हैं कि हर वर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस की शुरुआत ही इसीलिए की गई ताकि दुनिया को ये याद दिलाया जा सके कि छोटे उद्योग केवल सामान नहीं बनाते बल्कि रोजगार पैदा करते हैं, नए लोगों को आत्मनिर्भर बनाते हैं,
1: और सबसे बड़ी बात ये है कि हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे भी बढ़ाते हैं। आज यदि हम नजर दौड़ाते हैं बहनों, तो भारत में करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ इन्हें ही कहा जाता है।
2: बिल्कुल। महिलाओं ने स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदारों और घरेलू उत्पाद बनाने वालों से सामान खरीदें, उनके काम को सोशल मीडिया पर साझा करें या उन्हें प्रोत्साहित करें, तो ये भी इस क्षेत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। सभी का
1: बिल्कुल योगदान होगा गीता। और बहनों, याद रखिए कि हर बड़ा उद्योग कभी न कभी एक छोटे कदम से ही तो शुरू हुआ था ना।
2: बिल्कुल।
1: इसलिए छोटे उद्योगों का सम्मान करना, उन्हें बढ़ावा देना और लोकल को अपनाना केवल एक आर्थिक फैसला नहीं है बल्कि हमारे देश के विकास में हमारी भागीदारी भी है।
2: और कार्यक्रम के विकास में हमारी भागीदारी क्या हो सकती है साक्षी?
1: एक खूबसूरत गीत।
2: तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: साक्षी अभी हम बात कर रहे थे ना कि लघु उद्योग मध्यम उद्योग की बात करने में तो लग रहा था कि घर से शुरुआत करो और थोड़े समय में फेमस हो जाओ है ना, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो पता चलता है कि व्यवसाय करना आसान नहीं है।
1: ये तो सही कह रही हूँ गीता, वास्तविकता कल्पना से अलग होती है। अगर सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिल जाती तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। सुनने में ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है बहनों, लेकिन हकीकत तो यही है। आज के दौर में सफलता सिर्फ ज्यादा मेहनत करने वालों को नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने वालों को मिलती है। यही अंतर है कि एक सामान्य व्यापार करने वाले और स्मार्ट बिजनेस करने वालों में जो अंतर होता है ना, वो बस यही है।
0: जरा सोचिए बहनों, एक किसान दिन रात मेहनत करता है लेकिन दूसरा किसान उसी मेहनत के साथ मौसम की जानकारी लेता है, नई तकनीक अपनाता है, सही बीज भी चुनता है और अपनी फसल सीधे ग्राहकों तक पहुंचाता है। अब दोनों ने मेहनत तो बराबर की है ना, लेकिन आगे वही निकला जिसने स्मार्ट तरीके से काम किया।
1: बिल्कुल सेम यही बिजनेस में भी लागू होता है बहनों। केवल दुकान खोल लेना या उत्पाद बना लेना ही काफी नहीं होता है, ये हमको समझना होगा कि आज ग्राहक क्या चाहता है, किस दिशा में बाजार चल रहा है और तकनीक का उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। उसी से ही आप अपने काम को कैसे आसान और बेहतर बना सकते हैं ये भी आपको सीखना होगा।
0: बिल्कुल बहनों, याद रखिए आज का बाजार तेजी से बदल रहा है और जो बदलाव के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है, इसलिए केवल मेहनत करने की नहीं बल्कि मेहनत को सही दिशा देने की जरूरत है। क्योंकि सफलता ना उन लोगों के पास नहीं जाती जो सबसे ज्यादा काम करते हैं बल्कि उनके पास जाती है जो सबसे समझदारी से काम करते हैं, और यही है सखियों स्मार्ट बिजनेस की पहचान।
1: और कहते भी हैं गीता की बदलाव ही प्रकृति का नियम है।
0: बिल्कुल
1: तो जीत उसी की होती है बहनों जो केवल मेहनत नहीं दूरदर्शिता, नई सोच और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए बहनों अपने व्यवसाय को केवल चलाइए मत, उसे समय के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि भविष्य उनका नहीं होता जो बदलाव से डरते हैं बल्कि उनका होता है जो बदलाव को अवसर बनाकर आगे बढ़ते हैं।
0: तो आइए सखियों मेहनत के साथ स्मार्ट सोच को भी अपनाएं और अपने व्यवसाय को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और इस वक्त हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अगर आपकी अनुमति हो तो ये सुनाएं।

0: गीता गौतम बुद्ध के जीवन के कई सूत्र बताते हैं जिन्हें यदि जीवन में हम अपना लें तो जीवन सरल हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: वो कहते हैं कि क्रोध को त्यागो क्योंकि वो बुद्धि को नष्ट कर देता है। ऐसे ही कई उपदेश हैं जिनसे जीवन में मधुरता आ सकती है। क्या है महात्मा बुद्ध के उपदेशों की प्रासंगिकता, सुनेंगे वार्ता के जरिए, और वार्ताकार है श्रीमती कांता मीना।
2: शताब्दी ईसा पूर्व राजकुल में जन्मे महात्मा बुद्ध का मन राजकीय वैभव संपन्नता और आडंबरों में बंध ना सका। महात्मा बुद्ध बचपन से ही एकांत प्रिय, दयालु, दीन दुखियों और प्रत्येक प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते थे। संसार में दीन दुखियों के कल्याण हेतु एक नए मार्ग की खोज के लिए उन्होंने गृह त्याग कर मानवता का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म का मार्ग संसार को दिखाया। बौद्ध साहित्य के अनुसार महात्मा बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में नेपाल की घाटी में स्थित शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय राजा शुद्धोदन के यहाँ बैसाख की पूर्णिमा के दिन उनकी राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन उनके जन्म के 7 दिन बाद ही बुद्ध की माता का आकस्मिक निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति ने किया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम गोत्र होने के कारण गौतम नाम से भी जाने गए। बौद्ध साहित्य में कहा गया कि इनके जन्म के कुछ समय बाद अस्ति नामक ज्योतिषी ने उनके भविष्य में महान संत अथवा चक्रवर्ती सम्राट होने की भविष्यवाणी की थी। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होने पर वह बुद्ध कहलाए। विश्वामित्र नामक आचार्य ने उन्हें वेद, वेदांग, धनुर्विद्या, घोड़सवारी, अस्त्र संचालन आदि सभी प्रकार की शिक्षाएं दी, जिनका प्रखर बुद्धि के कारण सिद्धार्थ ने शीघ्र ही सीख लिया। सिद्धार्थ बचपन से ही विनम्र और दयालु थे। एक बार अपने भाई देवदत्त द्वारा हंस के तीर मारने पर उनके गिरने पर सिद्धार्थ ने उसे उठाकर करुणा और स्नेह से रखा और देवदत्त के हट करने पर भी उसे नहीं लौटाया। बचपन से ही राजकुमार एकांत में बैठकर विचार और चिंतन में लीन रहते थे। उनको सांसारिक बातों में रुचि नहीं थी और मन में दीन दुखियों के प्रति प्रेम व सहानुभूति थी। युवावस्था में ही उनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति निरस्ता को देखते हुए राजा शुद्धोदन

में राजकुमार का मन सांसारिक जीवन की ओर आकर्षित करने के लिए 19 वर्ष की आयु में एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया। उनके राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन पुत्र मोह भी उनको सांसारिक जीवन के बंधन में नहीं बांध सका। उनके सामने संपूर्ण संसार के कल्याण का लक्ष्य था। एक दिन घटित घटना को देखकर उनका मन विरक्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजकुमार गौतम अपने रथ पर बैठकर बाग में घूमने के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मृतक की अर्थी को देखा, एक कृशकाय रोगी को और एक साधु को देखा। अपने सारथी छंदक से यह जानकर कि प्रत्येक व्यक्ति इस दशा को प्राप्त होता है, तो उनका मन विचलित हो उठा और वह मनुष्य के कल्याण के मार्ग को ढूंढने के लिए व्याकुल हो उठे। इस प्रकार सांसारिक सुखों को त्याग कर 29 वर्ष की उम्र में 537 ईसा पूर्व में बैसाख की पूर्णिमा की रात को अपनी पत्नी, पुत्र, पिता और मासी को महलों में सोते हुए छोड़कर शांति की खोज में निकल पड़े। उनका यह गृह त्याग कर देना, मनुष्य के कल्याण की खोज में चल पड़ना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। कपिल वस्तु से कुछ दूर जाकर अपनी पोशाक व आभूषण उतारे, अपने सेवक को देकर घर की ओर वापस भेज दिया तथा वह अपने केश कटवा कर गैरवे वस्त्र पहनकर सन्यासी हो गए। 6 वर्ष तक घूमते हुए जीवन, मृत्यु, ईश्वर, अमरता, जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए वह सत्य की खोज में निकल पड़े। नरंजना नदी के किनारे बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठे। यही यकायक बैसाख की पूर्णिमा के दिन दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कई वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान जिस पीपल पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। महात्मा बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा की दौर की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं का मार्ग 2 है, एक तप का मार्ग अत्यंत विलास का, दोनों ही से संकट है। भिक्षुओं को एक तीसरा मार्ग तथागत का देखा, बीच का यानी कि मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, ना ही अत्यंत तप का और ना ही अत्यंत विलास का। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में आत्म संतुलन की धारणा को विशेष महत्व दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भोग की अति अर्थात तपस्या की अति से भी बचना जरूरी है। भोग की अति से चेतना की चितड़े होकर विलुप्त होकर संसार शुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के दिलो दिमाग की दहलीज पर विनाश अपना डेरा डाल देता है। ठीक वैसे ही तपस्या की अति से तह दुर्लभ और मनोबल के आधार पर आत्मज्ञान प्राप्त करना ठीक वैसा ही है जैसा कि रेत की बुनियाद पर कोई सपने का महल बनाना। बुद्ध 45 वर्ष तक घूम घूम कर अपना उपदेश देते रहे। उन्होंने सत्य को जीवन के हर पहलू, मन, वचन और कर्म में महत्वपूर्ण बताया। महान पुरुष का महात्म्य इसी बात में है कि वह मानवता को कितनी मात्रा में मानवता की ओर अग्रसर करता है। तो तथागत से बढ़कर दूसरा कौन सा आदमी महान हो सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी बाह्य शक्ति को आदमी के ऊपर बिठाकर उसका दर्जा नहीं घटाया, बल्कि उसे प्रजा और मैत्री के शिखर पर ले जाकर बिठा दिया। गौतम बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य है। पहला यह कि दुख है, दूसरा यह कि दुख का कारण है, तीसरा यह कि दुख का निदान है, चौथा यह कि वह मार्ग है जिससे दुख का निदान होता है। गौतम बुद्ध के मत के अनुसार अष्टांगी मार्ग वह मध्यम मार्ग है जिससे दुख का निदान होता है। अष्टांगी मार्ग चूंकि ज्ञान, संकल्प, वचन, क्रमात्, व्यायाम, स्मृति, समाधि, आजीविका के संदर्भ में साक्षात्कार कराते हैं, अतः मध्यम मार्ग ज्ञान देने वाला, शांति व निर्माण देने वाला, अति कल्याणकारी और कल्याणकारी है वही शेखर है। महात्मा बुद्ध विश्व कल्याण के लिए मैत्री की भावना पर बल देते थे। उनका मानना था कि मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भावना का स्वरूप फैल सकता है। उनका मानना था कि बैर को बैर से खत्म नहीं किया जा सकता, मैत्री का मध्यम मार्ग निकाला जाए। जब तक विश्व में सद्भावना रहेगी, मानवता की कलियां खिलती रहेगी, तभी तक संसार सुख समृद्धि के मार्ग की ओर उन्नयन रहेगा। साथ ही वह सदैव वसुदेव कुटुंब

0: कर्म की भावना को विद्यमान रहेगी। मानव को अपने आचरण में शुद्धता व सभ्यता लाने के लिए बुद्ध ने पंचशील के आचरण का पाठ पढ़ाया, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सटीक जान पड़ता है। शील से अभिप्राय है सदाचार और संयम। जिसे मानव के पास सदाचार और संयम ना हो, उस मनुष्य को चरित्रवान कहना एकदम गलत होगा, क्योंकि सदाचार और संयम ही मनुष्य का एक ऐसा कहना है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता और ना ही कोई छीन सकता है। पंचशील के अनुसरण कर प्रत्येक मानव सुखी व सदाचारी बन सकता है। सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने भीतर मानवीय गुणों को जागृत करना, निर्भीक होकर सत्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए सदैव कर्म पथ पर चलते रहना, दोष अथवा सामाजिक कुरीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए दुर्व्यसनों को दूर रहना तथा सदैव चारित्रिक आचरण करना, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए सदैव ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना, मिथ्या से बचे रहना, अपने उद्देश्यों को निर्धारित करके निरंतर उसी दिशा में क्रमवत आगे के मार्ग का अनुसरण करना। हम सभी जीवों के साथ कल्याणकारी नम सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करना चाहिए तथा दूसरों को कष्ट मुक्त करने के लिए अपने सुख को भी छोड़ देना चाहिए। भौतिकता की अंधी दौड़ से बचकर नैतिकता के मार्ग पर चलना जीवन मूल्यों व चरित्रवान नागरिक बनने की शिक्षा देते हैं। राजसी वैभव को त्याग कर मानव कल्याण के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही महात्मा बुद्ध का उद्देश्य रहा। बुद्ध के जीवन से महान शिक्षाएं और प्रेरणा मिलती है। इस मार्ग पर चलने से मानव का कल्याण होगा। उनकी प्रमुख शिक्षाएं 4 आर्य सत्य अष्टांगी मार्ग 10 शील के रूप में थी। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पर जोर दिया। उनका कहना था कि प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना महापाप है। उन्होंने जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति बताया, जिससे सभी का कल्याण हो। उनका विश्वास है अच्छे व बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह पुनर्जन्म और मोक्ष में विश्वास करते थे। मोक्ष से उनका अर्थ मृत्यु से छुटकारा नहीं था, बल्कि दुख से छूटकर पूर्ण शांति का अनुभव करना था। उनका मानना था कि जीवों के प्रति प्रेम व दया की भावना होनी चाहिए। अहिंसा के रास्ते को अपनाने पर जोर दिया। सांसारिक वासनाओं को वह क्षणिक सुख मानते थे। सरल व संयमी जीवन जीने की प्रेरणा दी। जाति पाति की घोर निंदा की। बुद्ध के उपदेश मानव जाति के हृदय में सदैव जीवित रहेंगे। इसमें करुणा, दया, शांति, आपसी सहयोग व भाईचारे की शिक्षा की प्रेरणा दी। महात्मा बुद्ध के जीवन में बैसाख पूर्णिमा का महत्वपूर्ण संयोग रहा। इसी तिथि को उन्होंने गृह त्याग दिया और इसी तिथि को उनका निर्वाण हुआ, अतः इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में महात्मा बुद्ध हमें चिंतन मनन करने के लिए बहुत कुछ प्रेरणा देते रहेंगे।
1: तो अभी हमने सुनी वार्ता महात्मा बुद्ध के उपदेशों की प्रासंगिकता, और वार्ताकार थी श्रीमती कांता मीणा। जैसे महात्मा बुद्ध ने लोगों के जीवन को सही राह दिखाई, अपने उपदेशों से वैसे ही हमारी सुरक्षा को दिशा देती है भारतीय सेना। तो आइए उनकी शौर्य गाथा को सुने कैलाश खेर की आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: साक्षी कहती है ना, जब लबों पर मुस्कान सजी हो और दिल में उमंग हो तो जीवन में कितना भी शोर क्यों ना हो, हर शोर कानों में मिठास घोलने लगता है।
1: बिल्कुल, और ये मिठास हर कोई अपने जीवन में घोलना चाहता है, पर कुछ विरले ही हैं जो कठिन परिस्थिति में भी भांगड़ा की धुन पर झूमते हैं। मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, साथ ही अपनी खुश मिजाजी, जोश और दिलदारी के साथ मिलजुल कर खुशियां भी मनाते हैं।
0: जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं पांच नदियों से सुसज्जित भूमि पंजाब की, जहाँ की संस्कृति न केवल रंग बिरंगी है बल्कि मेहनत, साहस, प्रेम और भाईचारे की मिसाल है। और बात की जाए पंजाब के इतिहास की, तो भी वहाँ का इतिहास तो वीरता और बलिदान से भरा हुआ है।
1: बिल्कुल भरा हुआ है। वैसे तो पंजाब की धरती पर अनेक वीरों ने जन्म लिया है, मगर जिनमें से महाराजा रणजीत सिंह का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। मजबूत और विशाल सिख साम्राज्य के संस्थापक और शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था और आज यानी कि 27 जून को उनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं।
0: जी हाँ सखियों, महाराजा रणजीत सिंह वैसे तो सभी जानते हैं कि बेहद ही पराक्रमी राजा थे, लेकिन अगर उनके गुणों के बारे में हम और भी बात करें तो वे न केवल अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि वे सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे। उनकी सेना में विभिन्न धर्मों के लोग शामिल थे और उनकी इन्हीं खासियतों के चलते पंजाब के लोक जीवन और लोक कथाओं में वे इस कदर रच बस गए हैं कि उनके नाम को अलग करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूध से पानी को निकालना।
1: और उनके में बहनों ब्रिटिश इतिहासकार जेटी विलियम ने भी कहा था कि महाराजा रणजीत सिंह अगर एक पीढ़ी पुराने होते तो वे पूरे हिंदुस्तान को फतह कर सकते थे।

0: हालांकि बचपन से ही चेचक से एक आंख गंवाने वाले और पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपने राज्य को शिक्षा और कला को प्रोत्साहन दिया।
1: जी हाँ सखियों, और उनकी अगर कृतज्ञता की बात की जाए तो उनके शासन काल के दौरान जो नानकशाही सिक्के बनाए जाते थे उन पर फारसी में एक वाक्य लिखा रहता था जिसका अर्थ होता था, अपने साम्राज्य, अपनी विजय और अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी का ऋणी हूँ।
0: वाकई इतनी बड़ी साम्राज्य के राजा होने के बावजूद भी बहनों उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया और उनके दरिया दिल स्वभाव के कारण ही उनकी जो सबसे अमिट विरासत थी सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारे हरमंदिर साहिब का जीर्णोद्धार और विस्तार था, जिसे आज हम सभी लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं।
1: बिल्कुल सखियों, जिसकी अलौकिक दिव्यता, बसती हुई गुरबाणी की धुन और अमृत सरोवर की शांति और श्रद्धालुओं की आस्था का संगम मन की गहराई तक छू लेता है। और अब आइए हम भी महसूस करें इसी शांति को कुछ इस गीत के साथ।

0: साक्षी, जब हम शांति और सुकून की बात करते हैं तो हम सभी की चाहत होती है कि अपने तरीके से हम शांति और सुकून पा सके ना, लेकिन पता है मेरे लिए शांति और सुकून का पर्याय है प्रकृति।
1: अच्छा,
0: क्योंकि प्रकृति अपने अनगिनत रूपों से हमारे जीवन को आनंद और सुकून प्रदान करती है। और जब झरनों की मधुर धुन और पानी की कलकल आवाज या वो पेड़ों का दृश्य मुझे नजर आता है ना, तो आंखों को इतना सुकून मिलता है कि बस पूछो ही मत।
1: बिल्कुल, और तुम ये बात सही भी कह रही हो, लेकिन जब पानी सिर्फ हमारी आंखों को ही राहत नहीं पहुंचाता है बल्कि हमारी पूरी दिनचर्या को भी चढ़ाता है।
0: अच्छा।
1: जल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे रोजमर्रा के कामों में। सोचो अगर बिना पानी के हमें जीना पड़े तो वो जीवन कैसा होगा।
0: मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकती हूँ बिना पानी के अपने जीवन की, पता है। इसीलिए हमारी सरकार ने ना सभी को पानी मिल सके इसके लिए जल जीवन मिशन योजना चलाई है, ताकि हर व्यक्ति को, हर घर को जल की पूर्ति हो सके।
1: बिल्कुल, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है बहनों कि ग्रामीण भारत के हर घर में व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंच सके, ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।
0: बिल्कुल, और केवल साक्षी घरों में ही नहीं बल्कि स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसी जगहों पर भी नल से जल पहुंचाना इस योजना का हिस्सा है।
1: और केवल जल पहुंचाना ही नहीं बल्कि अपशिष्ट जल प्रबंधन, वर्षा के जल का संचयन और जल स्रोतों को रिचार्ज करना भी इस योजना का अहम हिस्सा है।
0: वाकई साक्षी, इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए दूर दराज जो क्षेत्रों में पैदल जाने से उन्हें मुक्ति भी मिली है, साथ ही उनके समय की बचत भी हुई है।
1: बिल्कुल, समय की बचत हुई है और साथ ही बचत हुई है हमारे स्वास्थ्य की भी, क्योंकि जब शुद्ध और सुरक्षित पानी का सेवन होगा तो गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का भी खतरा कम हो जाएगा और हर घर मुस्कुराएगा।
0: सही कहा, तो क्यों ना अभी हम सभी मुस्कुराते हैं और आनंद लेते हैं अगले गीत।
1: बिल्कुल।

0: मैनू, हम भी चाहते हैं कि हम आपके आसपास ही रहें और वो हर रोज मिलने आए और हर रोज आते भी हैं, लेकिन इस वक्त समय हमसे कह रहा है दूर जाने के लिए। तो दूर जाएंगे तभी तो हम अगले दिन आपके पास आ पाएंगे। तो इस वक्त के लिए दीजिए आगे अपने दोनों सखियों, मैं साक्षी गोस्वामी और
1: मैं गीता शर्मा,
0: नमस्कार।

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर

0: ऑफिसर्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटेनिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ब्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस बजट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वे एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने

0: उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इफको, क्रिप्को, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy

0: क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। यह सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CUCI थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में

0: भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौड़ में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

उदित नारायण और साधना सरगम के स्वर में फिल्म जो जीता वही सिकंदर से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म साजन से एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने एक गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के डोलामरु चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अभी समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में 5:30 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 5 बजने वाले हैं। हमारी आज की दूसरी और सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सबसे पहले प्रस्तुत है हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान

0: स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और ज्वेसांस जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिंह, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के इस समय 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये युववाणी कार्यक्रम पेश करने के लिए हाजिर हैं दिशा भाटी और शारदा नैन।

0: नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त दिशा।
1: और मैं हूं शारदा। दोस्तों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम युवाणी में।
0: वैसे शारदा, आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में दैनिक योग कितना जरूरी बन गया है। देखो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले लोगों के पास इतने साधन नहीं होते थे, उसके बावजूद भी वो हमसे ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन आज हर काम आसान हो गया है, फिर भी लोग थके हुए, परेशान, बीमार मुझे ज्यादा दिखाई देते हैं।
1: सही कह रही हो तुम दिशा। आज देखो, छोटी सी दूरी भी पैदल चलने के बजाय किसी न किसी वाहन से तय करना पसंद करते हैं हम। घंटों एक ही जगह कर बैठ कर काम करते हैं और फिर भी कहते हैं कि कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है और थकान की दिक्कत है।
0: सबसे हैरानी की बात है कि हम इसे सामान्य मानते हैं। अगर किसी को ये थकान हो भी रही तो ऐसा सोचता है कि आजकल सबके साथ ऐसा ही होता है।
1: हाँ, जबकि दोस्तों ये सामान्य नहीं है। स्वस्थ रहना हमारे शरीर की ज़रूरत है और अगर शरीर और मन दोनों ठीक नहीं होंगे तो हम किसी भी काम को अपना 100% कैसे दे पाएंगे?
0: और इसी वजह से आज योग की बात करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है बल्कि खुद को स्वस्थ रखने का एक आसान और असरदार तरीका भी है।
1: सही कहा दिशा तुम्हें। मुझे पता है योग की सबसे अच्छी बात क्या लगती है
0: क्या
1: कि योग को करने के लिए ना कोई खास इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और ना ही कोई खास जगह की, बस ज़रूरत है तो इच्छा की और रेगुलरिटी की।
0: यही चीज तो आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है। अब लोग कहते हैं कि उनके पास समय ही तो नहीं है।
1: हाँ वही तो दोस्तों, हम दिन भर बहुत सारी चीज़ें तो कर लेते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए वक्त नहीं निकालते।
0: अब देखो ना शादा, कि मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, पर जब हम खुद डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास।
1: ये तो बहुत सही एग्जाम्पल है दिशा। दोस्तों, योग उसी चार्जर की तरह काम करता है जो शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा देता है।
0: शादा, जब योग की बात होती है तो सबसे पहले लोग शरीर के बारे में सोचते हैं। तुम्हारे अनुसार शरीर को इससे क्या फायदा मिलता है?
1: देखो दिशा, मैं बताती हूँ तुम्हें। हमारे शरीर जब धीरे धीरे जब हम रोज योग करते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे ज्यादा लचीला होता है, ज्यादा एक्टिव बन जाता है। और ऐसा होता है ना कि आजकल बहुत से लोग सुबह उठते हैं और कहते हैं कि मेरी गर्दन में जकड़न है, मेरी कमर में दर्द है और शरीर जो है वो बहुत भारी हो चुका है। लेकिन रेगुलर योग करने से ऐसी समस्याओं में काफ़ी राहत मिल सकती है।
0: हाँ, ये बात तो मैंने भी कई बार महसूस की है। मेरी एक रिश्तेदार थी जो घंटों ऑफिस में बैठकर काम करते, तो वो शिकायत करते थे कि उनके पीठ के दर्द, शिकायत हमेशा रहती थी। फिर उन्होंने नियमित रूप से योग करना शुरू किया और आज उन्हें पहले से ज़्यादा परेशानी नहीं होती है।
1: बिल्कुल ऐसा होगा ही दिशा, क्योंकि योग शरीर के

0: हर हिस्से पर काम करता है। धीरे धीरे शरीर में लचीलापन और मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं इसमें।
1: लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या शायद शारीरिक नहीं, मानसिक हो गई है।
0: हाँ, मैं भी यही मानती हूँ। आज हर उम्र का व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। बच्चों को पढ़ाई की चिंता है, युवाओं को करियर की चिंता है, और बड़े लोगों को जिम्मेदारी की चिंता है।
1: और कई बार तो ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति ठीक से सो भी नहीं पाता।
0: सही कहा। ऐसे समय में योग और मेडिटेशन बहुत मदद करते हैं। जब हम कुछ देर शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है।
1: शायद योग में उम्र कोई बाधा नहीं है। अब देखो ना, विद्यार्थी के लिए योग काफी फायदेमंद माना जाता है।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल पढ़ाई का दबाव पहले से कई ज़्यादा हो चुका है। ऐसे समय में योग और ध्यान विद्यार्थियों को शांत रहने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं।
1: और अगर कामकाजी लोगों की बात करें तो सोचो, कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, ऐसे में हल्का योग शरीर सक्रिय बनाए रखने में मदद भी तो करता है।
0: हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप भी रोज योग करना शुरू करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति रोज योग करता है, कुछ मिनट योग के लिए निकालता है, तो धीरे धीरे उससे इसके फायदे रोज महसूस होने लगते हैं।
1: और दोस्तों, बंद दीवारों के तनाव को पीछे छोड़कर जब हम दैनिक योग के लिए सांसों की रफ्तार मोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बंद पिंजरे से निकलकर सीधे खुले आसमान में उड़ान भर रहे हैं।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, अब वक्त हो चुका है एक खास सेगमेंट का, जो कि है क्विज सेगमेंट, जिसमें हम आपसे पूछते हैं दो रोचक सवाल। तो बिना देर किए जानते हैं आज का पहला सवाल।
2: आज का पहला सवाल, ग्रीन ऑस्कर 2026 किस दो भारतीय महिलाओं ने जीता?
1: आज का दूसरा सवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

0: पहला सवाल था, ग्रीन ऑस्कर 2026 किस दो भारतीय महिलाओं ने जीता?
1: और दूसरा सवाल था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
0: दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो क्विज सेगमेंट के बाद अब हमारे साथ है अगला टॉपिक।
1: शादा, कल मैंने रास्ते में एक लड़के को देखा था। वो बाइक चला रहा था और एक हाथ से फोन भी देख रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ जरूरी काम हो सकता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो सामने से आ रही गाड़ी से बस बार बार बचा।
0: हाँ दिशा, ये तो अब बहुत ही आम बात हो गई है। लोग समझते ही नहीं कि सड़क पर थोड़ी सी भी लापरवाही कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत बन सकती है। उस लड़के को शायद उस पल लगा होगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन असल में खतरा उसी पल शुरू हो चुका था।
1: और देखो ना कि जब ट्रैफिक पुलिस रोकती है तब अचानक सबको याद आता है कि ये नियम भी कोई चीज़ हो सकते हैं।
0: हाँ, और उस वक्त जो बहाना होता है वो सबसे आम होता है। बस थोड़ा सा ही तो दूर जाना था, लेकिन सड़क पर दुर्घटना दूरी नहीं देखती दोस्तों, वो सिर्फ गलती देखती है।
1: सही बात है शारदा, कई बार तो लोग इतना तेज गाड़ी चलाते हैं जैसे समय से जीतना है, लेकिन असल में ही वो समय से नहीं अपनी जिंदगी से खेल रहे होते हैं।
0: और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग नियमों को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ते हैं। जैसे सिग्नल हो तो थोड़ा जल्दी निकल जाना, या खाली सड़क पर तेज चलाना।
1: और एक बात तो ये भी सच है कि

0: हेलमेट या सीट बेल्ट हमें रोकते नहीं है दोस्तों, बल्कि हमें बचाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दिशा, और ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है।
0: आजकल युवाओं में एक और आदत बहुत बढ़ गई है, जल्दबाजी की। हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी पहुंचना, जल्दी आगे बढ़ना, जल्दी सब कुछ।
1: लेकिन ये जल्दबाजी सड़क पर सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि सड़क पर एक सेकंड का फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है।
0: सोचो कि सिर्फ 5 मिनट जल्दी पहुंचने के लिए अगर कोई अपनी सुरक्षा दांव पे लगा दे तो वो समझदारी नहीं कही जा सकती।
1: सही कहा, असली समझदारी वही है दोस्तों जिसमें हम सुरक्षित रहकर अपने काम पूरे करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी एक बड़ी जिंदगी बचा सकती है।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं वार्ता राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचनाकार बकीम चंद्र चटर्जी, जिसके वार्ताकार है मुरली मनोहर सारस्वत.
2: हाल ही में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने अब 6 छंदों वाला पूर्ण वंदे मातरम अंगीकार किया है. इसमें वे 4 अतिरिक्त छंद भी सम्मिलित हैं जो अमर रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखे थे. राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता

0: दोस्तों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं वार्ता राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसके वार्ताकार है मुरली मनोहर सारस्वत।
1: हाल ही में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने अब 6 छंदों वाला पूर्ण वंदे मातरम अंगीकार किया है। इसमें वे 4 अतिरिक्त छंद भी सम्मिलित हैं जो अमर रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखे थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वही बीज मंत्र है जिसका उद्घोष करते हुए अनगिनत देशभक्त क्रांतिवीर स्वातंत्र्य सैनिक फांसी के तख्त पर हंसते हंसते चढ़ गए। इस देश के राष्ट्र जीवन में वंदे मातरम को श्रीमद् भागवत गीता के समान असाधारण महत्व व स्थान प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम का उद्घोष देशभक्ति की गर्जना समझी जाती है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म बंगाल की 24 परगना जिले के कांतलपाड़ा गांव में 27 जून 1838 को एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता यादव चंद्र मिदनापुर के डिप्टी कलेक्टर थे। माता बड़ी स्नेहमयी साध्वी महिला थीं। बचपन से ही रामायण महाभारत की कहानियों ने उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षा मिदनापुर में ही आरंभ हुई। ये बड़े प्रतिभावान छात्र थे। इनकी बुद्धिमत्ता से लोग बड़े प्रभावित होते थे। विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने हुगली के मोहसिन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज की प्रत्येक परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते रहे। खेलकूद की अपेक्षा उन्हें पुस्तकों से अधिक लगाव था। संस्कृत में इनकी काफी रुचि थी। सन 1856 में इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। बीए उत्तीर्ण कर ये डिप्टी कलेक्टर बन गए। इस बीच कानून की भी परीक्षा पास कर ली। तत्पश्चात इन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट बनाया गया। बंकिम चंद्र बड़े सजग व स्वाभिमानी अधिकारी थे। इसी कारण नौकरी के दौरान ये कभी भी एक ही जगह टिक न सके। परिश्रम के बावजूद उन्हें ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंच पाए। 32 वर्ष तक सरकारी नौकरी कर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। अपनी पत्नी राजलक्ष्मी देवी से उन्हें 3 पुत्रियां हुई। जयसोर में इनका परिचय नामी बंगला नाटककार दीनबंधु मिश्र से हुआ। वे दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ उन्होंने अपने मित्र दीनबंधु मिश्र को ही समर्पित की है। बंकिम चंद्र ने पहले कुछ कविताएं लिखी, फिर अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा। इसके बाद अपनी मातृभाषा बंगाली में लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। आनंद मठ उपन्यास उसी में प्रकाशित हुआ। बाद में 1882 में वह पुस्तक के रूप में छपा। इस उपन्यास ने बंकिम चंद्र को कीर्ति के शिखर पर पहुंचा दिया। बंकिम चंद्र की लेखन शैली से बंगला भाषा को नया गौरव मिला। बंकिम के उपन्यास पाठकों के लिए एक नई अनुभूति थी। बंगाल की जनता तो उनके पीछे दीवानी थी। उन्होंने कुल 15 उपन्यास लिखे, जिसमें आनंदमठ, देवी चौधरानी तथा सीताराम में उस समय की परिस्थिति का चित्रण है। दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, चंद्रशेखर व राज सिंह बहुत ही लोकप्रिय हुए। विषवृक्ष, इंदिरा, युगलांगुरिया, राधा रानी, रजनी और कृष्णकांत की वसीयत में समाज की अच्छाइयों व बुराइयों का चित्रण हुआ है। वे उन महान लोगों में से थे जिन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनके लेखन से राष्ट्रीयता का अर्थ लोग समझ सके। आनंद मठ राष्ट्रभक्ति पर लिखा शानदार उपन्यास है। सन 1773 में बंगाल में पड़े भीषण अकाल के समय अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ स्वराज्य के लिए जो आंदोलन हुआ, उसी की कहानी आनंद मठ में है। आनंद मठ देश के लिए जीने और देश के लिए मरने वालों की कहानी है। सत्यानंद, भवानंद, महेंद्र, जीवानंद, शांति आदि का मातृभूमि से प्रेम अनुकरणीय है। महेंद्र से भवानंद कहते

हमारी तो बस एक ही माँ है और वह है मातृभूमि। ना हमारी और कोई माँ है, ना कोई पिता, ना पत्नी, ना बच्चे, ना घर द्वार। यह सुजलाम सुफलाम धरती ही तो हमारी माँ है। आनंद मठ उपन्यास का गीत वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र की साहित्य लता पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ पुष्प है। बंकिम चंद्र की प्रतिभा का संपूर्ण सौंदर्य, सौरभ तथा सुधा की माधुरी इस काव्य में एकत्रित हुई है। यह गीत आगे चलकर देशभक्तों का कंठहार बन गया तथा स्वाधीनता संग्राम का शस्त्र बन गया। बंकिम चंद्र के जीवन काल में ही इस गीत का अन्य भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु व कन्नड़ में अनुवाद हुआ। 1883 में इसकी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए नेशनल थिएटर के अध्यक्ष केदारनाथ चौधरी ने इसका नाट्य रूपांतरण किया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे गाया गया। इसके बाद लगातार कांग्रेस ने इसके बाद कांग्रेस के मंच पर मंगलाचरण के रूप में इसका गायन होता रहा है। यह गीत वहां राष्ट्रीयता का प्रखर बोध जगाता रहा। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम का नारा सर्वत्र गूंज उठा। इसी प्रकार 1865 में दुर्गेश नंदिनी का प्रकाशन हुआ और 28 वर्षों में इसके 13 संस्करण निकालने पड़े। बंकिम चंद्र के उपन्यास ने मनोरंजन के साथ साथ लोगों की विचार शक्ति को भी जागृत किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी इनके ऐतिहासिक उपन्यासों से बहुत प्रभावित थे। बंकिम चंद्र ने उपन्यास लेखन के साथ साथ अन्य उत्कृष्ट ग्रंथ भी लिखे, जैसे कृष्णचरित, धर्मतत्व, देवतत्व, श्रीमद् भगवत गीता पर विवेचन। अंग्रेजी और बांग्ला में उन्होंने हिंदुत्व पर लेख लिखे। अंग्रेजी के ग्रंथों का भी उनका अध्ययन गहरा था। वे स्वयं एक सनातन हिंदू परिवार के तत्वचिंतक थे। उनका लिखा कृष्णचरित उत्कृष्ट रचना के रूप में जाना जाता है। बंकिम चंद्र ने महाभारत, हरिवंश तथा पुराणों का गहराई से अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने जो जीवन दर्शन दिया है उससे बढ़कर दर्शन कोई नहीं दे सकता। कृष्ण पवित्रता व न्याय की साकार मूर्ति थे। उन्होंने स्वयं के लिए कुछ अपेक्षा नहीं की। कृष्ण सा त्यागी महापुरुष दूसरों को कृष्ण सा त्यागी महापुरुष दूसरा हो ही नहीं सकता। उन्होंने इसलिए उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। बंकिम चंद्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी लेखनी के माध्यम से महत्वपूर्ण अलख जगाई। उन्होंने सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका आरंभ की। पत्रिका के पहले अंक में वे लिखते हैं, जब तक हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को मातृभाषा में व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारी उन्नति हो ही नहीं सकती। बंकिम चंद्र लोगों को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना चाहते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी बंग दर्शन को आषाढ़ की प्रथम बौछार सा सुखद बताया। आषाढ़ की पहली बौछार से गर्मी से झुलसते पेड़ पौधों को नवजीवन मिलता है। बंग दर्शन ने जनता को प्रगति का नया रास्ता दिखाया। पाठक उसके अंकों की बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। उपन्यास, नाटक, काव्य, लेख, आलोचनाओं के स्तंभ इसमें रहते थे। भावी पत्रिकाओं के लिए इसने मार्ग प्रशस्त किया। बंकिम चंद्र मातृभाषा के अनुरागी थे। उन्होंने अंग्रेजियत के प्रति आकर्षित लोगों को लक्ष्य कर कहा, अपनी भाषा से ही लोग प्रगति कर सकते हैं। हमें किसी भाषा से घृणा नहीं करनी है। हमें तो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रत्येक भाषा का अध्ययन करना चाहिए। परंतु यदि प्रगति करनी है तो एक ही मार्ग है अपनी भाषा का। बंकिम चंद्र पक्के राष्ट्रभक्त थे। एक बार एक व्यक्ति कविता पठन के दौरान आर्थिक स्थिति से कमजोर भारतीयों का उपहास कर रहा था तो बंकिम से रहा नहीं गया। वे वहां से उठकर चले गए। रामकृष्ण परमहंस भी बंकिम चंद्र की राष्ट्रभक्ति के कायल थे। एक बार रामकृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम किस कारण बंकिम यानी तिरछे हो। बंकिम चंद्र ने हंसते हंसते उत्तर दिया, ब्रिटिशों की ठोकरों से। एक बार स्वामी विवेकानंद ढाका गए। युवकों से बातचीत के दौरान एक युवक ने उनसे पूछा, हमें क्या पढ़ना चाहिए।

0: तब उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, बंकिम का साहित्य। सचमुच बंकिम चंद्र की लेखनी ने भारतवर्ष में चेतना जागृत की। उनके गीत वंदे मातरम ने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। बंकिम चंद्र अपने माता पिता को भगवान से भी बढ़कर मानते थे। उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिए बिना वे कोई भी काम आरंभ नहीं करते थे, परंतु वे लेखन कार्य को अधिक समय नहीं दे पाए। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जीवन से मोह भी समाप्त हो गया। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से उनका स्वभाव पूर्णतः परिवर्तित हो गया। 8 अप्रैल 1894 को उनका स्वर्गवास हो गया। अंततः सचमुच वे ऋषि थे जिन्होंने हमें नए भारत का सृजन करने के लिए वंदे मातरम का संजीवन मंत्र दिया। बाद में इसी उपन्यास आनंद मठ पर इसी नाम से फिल्म भी बनी, जिसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने वंदे मातरम गीत को अपने स्वरों से यादगार बना दिया। बंकिम चंद्र के इस संजीवन मंत्र को स्वर देते हुए हम भारत को परम वैभव के पथ पर ले जाएं, यही बंकिम चंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको शत शत नमन करते हैं।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसके वार्ताकार थे मूल्य मनोहर सारस्वत। प्रस्तुति थी श्री रेवंतलाल लिंघा और संयोजन था श्री अमित सिंह। वैसे शायदा
2: दिशा, हमारे संविधान की एक खास बात यह है कि इसमें लगभग हर परिस्थिति के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की गई है, चाहे सामान्य स्थिति हो या फिर कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता हो।
1: और ऐसी एक व्यवस्था वो भी है अनुच्छेद 213, जिसमें अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
2: दोस्तों, मान लीजिए किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, लेकिन उस समय विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, ऐसे में क्या किया जाए?
1: यही तो वो स्थिति है जिसमें अनुच्छेद 213 का प्रावधान किया गया। इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं ताकि आवश्यक निर्णय लेने में देरी न हो और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहे।
2: दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो अध्यादेश एक तरह का अस्थायी कानून होता है। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत कार्रवाई करनी हो और विधानसभा की बैठक होने का इंतजार करना उचित न हो।
1: हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से अध्यादेश जारी नहीं करते, सामान्य रूप से वे राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा करते हैं।
2: और एक बार अध्यादेश जारी हो जाने के बाद उसका प्रभाव किसी सामान्य कानून की तरह ही होता है, यानी नागरिकों और प्रशासन दोनों के लिए उसका पालन करना आवश्यक होता है।
1: लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है, अध्यादेश स्थायी नहीं होता। जब विधानसभा का अगला सत्र शुरू होता है तब उस अध्यादेश को सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
2: यही विधानसभा उसे मंजूरी दे देती है तो वह आगे चलकर कानून का रूप ले सकता है, लेकिन यदि सदन उसके स्वीकार नहीं करता तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है।
3: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक

तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दिशा, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी पढ़ाई, काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं।
6: बिल्कुल, और ये दिन भर हम कई लोगों और कई कामों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी व्यक्ति यानी कि स्वयं पर ध्यान देना कई बार पीछे ही छूट जाता है।
5: हाँ, सही कहा तुमने, ऐसे में स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का भी ध्यान रखें।
6: सही कहा, जब हम कुछ समय अपनी पसंद के कामों के लिए निकालते हैं, जैसे कि किताब पढ़ना, संगीत सुनना, टहलना या कोई नया कौशल सीखना, तो मन को थोड़ी ताजगी मिलती है और तनाव भी कम होता है।
5: दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि लगातार काम करते रहने से व्यक्ति थकान महसूस करने लगता है, ऐसे में थोड़ा समय खुद के साथ बिताना ऊर्जा को फिर से बढ़ाने में मदद करता है।
6: यह समय हमारे लिए होता है, हमारे आत्मचिंतन का अवसर भी देता है, हम अपने लक्ष्यों, अपनी आदतों और अपनी प्रगति के बारे में सोच सकते हैं। इस समय खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद भी तो मिलती है।
5: दिशा, तुम्हें पता है कई लोग ये सोचते हैं कि स्वयं के लिए समय निकालना समय की बर्बादी है, जबकि वास्तव में यह हमारे व्यक्तित्व और मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है।
6: बिल्कुल, और जब हमारा मन शांत और थोड़ा संतुलित होता है, तब हम अपने कामों को और भी अधिक उत्साह और एकाग्रता के साथ कर पाते हैं।
5: हाँ हाँ, बिल्कुल, छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालना, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाना या प्रकृति के बीच समय बिताना भी काफी लाभदायक हो सकता है।
6: वैसे दरअसल शारदा, स्वयं के लिए समय निकालना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता भी है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
5: हाँ बिल्कुल, इसीलिए दोस्तों हमें अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय अपने लिए भी अवश्य निकालना चाहिए,
6: क्योंकि जब हम स्वयं अपना ध्यान रखते हैं तभी

0: अपने परिवार, समाज और अपने कार्यों को भी बेहतर ढंग से निभा पाते हैं।
1: और शायद यही जीवन का संतुलन है, दूसरों की जिम्मेदारियों के साथ साथ स्वयं के लिए भी कुछ पल संजो कर रखना। और इन घड़ी की सुइयों के पीछे भागना थोड़ा बंद करो और रोज थोड़ा वक्त सिर्फ खुद को दो।
0: क्योंकि जब आप स्वयं के लिए समय निकालेंगे, तब तक भीतर छिपे वो ख्वाबों के परिंदे पंख कैसे फैला पाएंगे।

0: शादा, हम सब जानते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है।
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: अच्छा शब्द किसी का दिन भी बना सकता है, तो एक वही एक कटु शब्द किसी के मन को चोट भी पहुंचा सकता है।
1: सही कहा दिशा। कई बार हम मजाक मजाक में या गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले को लंबे समय तक याद रह जाती है, और इन्हीं बातों में एक है ताना देना।
0: और दोस्तों, ताना देना एक ऐसी आदत है जिसमें लोग

0: सामान्य सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कई बार ये किसी के आत्मविश्वास और भावनाओं को प्रभावित भी कर देता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम किसी की पढ़ाई को लेकर, कभी किसी के रूप रंग को लेकर, तो कभी किसी की गलती को लेकर उसे ताना दे देते हैं। बोलने वाला तो शायद छोटी सी बात समझकर बोल देता है, पर जो सुनता है उस पर काफी गहरा असर रह जाता है।
0: इससे वही व्यक्ति खुद पर संदेह करने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लग जाता है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताने किसी समस्या का समाधान नहीं होते। यही यदि हमें किसी की गलती सुधारनी है तो हमें उसे सम्मान पूर्वक समझा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और ऐसे समय में हमें उन्हें सहयोग प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि तानी।
1: जब हम दूसरों से सम्मान पूर्वक बात करते हैं तो न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बनता है।
0: आखिरकार हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी भावनाओं को समझें, हमारा सम्मान करें, इसलिए हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए।
1: क्योंकि दोस्तों शब्द लौट कर नहीं आते, लेकिन उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है।
0: और शायद इसी कारण कहा जाता है कि किसी को ताना देने से बेहतर है उसे हौसला दिया जाए,
1: क्योंकि प्रोत्साहन इंसान को आगे बढ़ाता है जबकि ताने उसे पीछे खींच सकते हैं। इसके बजाय अपने शब्दों को वो खूबसूरत गीत बनाओ जो किसी टूटते हुए इंसान के दर्द को पिछा दे।

0: और अब वक्त है रोजगार सूचना का।
1: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों में नई भर्तियों का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
0: इसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, TGT टीचर, स्पेशल एजुकेटर, IT असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर भर्ती की जाएगी।
1: आवेदन की शुरुआती दिनांक 16 जून थी और लास्ट डेट है 15 जुलाई।
0: तो जल्द ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन करें।
1: वैसे शायद तुम्हें याद है कि हमने शुरुआत में

0: दोस्तों से दो सवाल पूछे थे।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अब वक्त है उन्हें सवालों के जवाब देने का।
1: तो दोस्तों आज का पहला सवाल था, ग्रीन ऑस्कर 2026 किस दो भारतीय महिलाओं ने जीता?
0: जिसका सही जवाब है परवीन शेख और डॉक्टर बरखा सुब्बा।
1: और दोस्तों आज का दूसरा सवाल था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
0: जिसका सही जवाब है महेश दीक्षित।
1: तो दोस्तों आज हमने आपसे बहुत सी बातें की, हमने देखा कि दैनिक जीवन में योग कितना महत्वपूर्ण है, हमने आपसे बात की सड़क सुरक्षा के बारे में, हमने आपसे बात की कि आपके लिए खुद का टाइम यानी कि मी टाइम कितना ज़रूरी है आपके लिए, और हमने बहुत सी बातें की कि किसी को ताना नहीं देना चाहिए, और हमने सरकारी कुछ अनुच्छेद 213 के बारे में भी बात की। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि सुई जो है, घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, ये टिक टिक चलती ही जा रही है, और अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। तो दोस्तों मैं हूँ शारदा
0: और मैं हूँ दिशा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी दिशा भाटी और शारदा नैन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के इस समय 5:55 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, हमारी इस सभा में आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलाकार प्रभात मुखोपाध्याय का सितार वादन। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत के अंतर्गत। आज फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुहाड़ शाम 7 बजे, और ये कार्यक्रम पेश करेंगे रामस्वरूप बिश्नोई और श्री कुंचीलाल स्वामी। श्रोताओं, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज इस कार्यक्रम की 150वीं कड़ी आप सुनेंगे, वाचन स्वर श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुतकर्ता श्री रेवंत राम लेघा और संयोजक होंगे श्री अमित सिंह।

सुगम संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 7:45 बजे। और लोक संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं, हम आपको बतला दें, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम विज्ञान भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर।

0: और दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे कलाकार प्रभात मुखोपाध्याय का सितार वादन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शीर्षक गीत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर, और फिल्म संगीत आप इसके अलावा सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें PMEGP 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, PMS पोर्टल, MSME ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, MSME टेस्टिंग पोर्टल और MSME आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

0: महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के इस समय 6:05 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है चेहरा।

श्रोताओं नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम शीर्षक गीत लेकर हाजिर हैं हम, और श्रोताओं कहते हैं कि इंसान की पहली पहचान उसका चेहरा होता है, लेकिन क्या सचमुच चेहरा सिर्फ पहचान है? नहीं, कभी यही चेहरा किसी की पहली मोहब्बत बन जाता है, कभी किसी की आखिरी याद, कभी मुस्कुराता है, कभी खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेहरे की, क्योंकि आज का फिल्म संगीत का ये शीर्षक गीत कार्यक्रम केंद्रित है चेहरे पर। तो आइए शुरुआत करते हैं उस गीत से जिसने वर्षों से प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है।

जी हाँ श्रोताओं, सच कहा गया है, चेहरे पढ़ने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन दिल पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। चेहरे की खूबसूरती समय के साथ बदल सकती है लेकिन चेहरे पर बसी सच्चाई, अपनापन और प्यार उम्र भर साथ चलते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे समय ठहर गया हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चेहरे पर मुस्कान रखना आसान है लेकिन मुस्कुराते हुए दर्द छिपाना बहुत मुश्किल। श्रोताओं, अगला गीत उस एहसास को समर्पित है जब पहली बार किसी का चेहरा दिल में उतर जाता है।

0: आप सुन रहे थे कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी के स्वर में बाजीगर फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में शीर्षक गीत। जी हाँ, आज का शीर्षक है चेहरा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, पहला प्यार, पहली नज़र और पहला चेहरा, ये तीनों जिंदगी भर याद रहते हैं। ज़रा यादों की गलियों में जाकर देखिए, जहाँ किसी की मुस्कुराहट आज भी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। चेहरे की सबसे बड़ी खूबसूरती मेकअप नहीं बल्कि दिल की सच्चाई होती है। जो चेहरा दूसरों के लिए मुस्कुराता है वही सबसे सुंदर कहलाता है। अब पेश है एक और खूबसूरत नगमा। जी हाँ, इस खूबसूरत नगमे को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम कभी कभी।

जी हाँ श्रोताओं, कुछ चेहरे ऐसे ही होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। बरसों बाद भी अगर सामने आ जाएं तो दिल उसी उम्र में लौट जाता है जब पहली बार उन्हें देखा था। अगर चेहरे पर सच्ची मुस्कान हो तो वह किसी भी गहने से ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकती है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत में शीर्षक गीत। आज का शीर्षक था चेहरा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। HPCL की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026, उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल और ODOP कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस साल 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता दिए जाने का ऐलान किया। श्री शर्मा ने पात्र उद्यमियों को रीको के भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण और सब्सिडी के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका है। 33 लाख से अधिक MSME के साथ राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है।
2: तो मुझे गर्व है कि 33 लाख से अधिक MSME उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमियों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है, क्योंकि जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में, वो आपके सामने है। उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके।
1: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री KK विश्नोई भी मौजूद रहे। MSME दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह ने प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कामों का सकारात्मक संदेश दिया। राजस्थान रिफाइनरी से प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा। HPCL की ओर से पहले चरण में राज्य भर में 300 से ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई HPCL और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी गई। इसके लिए प्रदेश में 304 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जहां रिटेल आउटलेट्स के लिए HPCL 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 31 जुलाई तक इस बारे में नई नीति तैयार की जाएगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि परियोजना के तहत सरकारी भूमि HPCL को लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नए पेट्रोल पंप स्थापित किए जा सकें। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल का तीसरे चरण का काम अंतिम दौर में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 3-4 महीनों में इसका पानी जोधपुर पहुंचने लगेगा। आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि इस परियोजना में

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म हम हैं प्रेमिका, ये गीत। इस आखिरी नगमे के साथ ही बस यही कहेंगे श्रोताओं, हर चेहरा एक कहानी है, किसी पर खुशियों के रंग हैं तो किसी पर संघर्ष की लकीरें, लेकिन सबसे खूबसूरत वही चेहरा है जो दूसरों के लिए दुआ बन जाए।

0: को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों से प्री मानसून की गतिविधियों की सक्रियता लगातार बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले अब भी तेज गर्मी और उमस के प्रभाव में हैं। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार जताए हैं। कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। आज 27 जिलों में अंधड़ और बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बीच आज बांसवाड़ा जिले के कई जगह तेज बरसात हुई। उधर सिरोही जिले की पिंडवाड़ा और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। आबूराज में अच्छी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। उधर बालोतरा और सवाईमाधोपुर में तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 29 जून को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बिरला सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में भामाशाहों और प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी समारोह में शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों को एकीकृत सेवाएं देने के लिए रैंप पोर्टल का अनावरण किया। HPCL की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश कर राज्य भर में 300 नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी पोर्टल पर प्रसारित होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण शर्मा ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, जल संरक्षण, कृषि, सामाजिक गतिविधियों और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम जारी है। आइए जानते हैं जिले के बीते माह की कुछ प्रमुख गतिविधियों के बारे में आज की चिट्ठी में। जिले में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इन दिनों शहरी सेवा शिविर लगाए गए हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। जिले की सभी 10 नगर निकायों में ये शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में मकानों के पट्टे, नामांतरण, विभिन्न प्रमाण पत्र और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों का निस्तारण किया जा रहा है। शिविर में लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। जिले में हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान जल संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां हुई। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम चूरू के प्रसिद्ध सेठानी के जोहड़े में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व पर चर्चा की गई। अभियान के दौरान जिले में 3,526 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले में उत्साह का माहौल रहा। जिला स्तरीय समारोह स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जिला स्टेडियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। आयोजन आयुर्वेद विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उनके जीवन और योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने उनके विचार

0: और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष चूरू जिले में 1624 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया है। इनमें से 177 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की गई। चयनित वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह का माहौल है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। जिले में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। रतनगढ़, सरदारशहर, तारानगर, चूरू, बीदासर और सुजानगढ़ क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में कमी आई है। कुछ स्थानों पर हालांकि जलभराव की स्थिति बनी, जिसे प्रशासन ने समय पर नियंत्रित किया। बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी तेज कर दी है। जिले के किसान मूंग, मोठ, ग्वार, चवला और बाजरा की बुआई में जुट गए हैं। कृषि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक लगभग 40% बुवाई हो चुकी है। किसान अब अच्छी मानसूनी वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत जिले में 10 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया है। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है। इस योजना में 300 से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। महिला सुरक्षा और सहायता से जुड़े मामलों में भी जिले में काम किया जा रहा है। सखी केंद्रों में प्राप्त अधिकांश मामलों का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार पुलिस थानों में संचालित महिला सहायता प्रकोष्ठों में प्राप्त मामलों का भी निस्तारण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिले में लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1990 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 4990 परिवारों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है। योजना के माध्यम से कई परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। जिले में मुहर्रम का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। चूरू शहर में विभिन्न स्थानों से ताजिए निकाले गए। जुलूस मुख्य बाजारों से होकर गुजरे। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए पेयजल और शरबत की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमियों ने भिड़ी सेवा में देवण सारू रैंप पोर्टल रो अनावरण करियो। HPCL का न्यू 400 करोड़ रुपया रो निवेश करने राज्य में 300 नवा पेट्रोल पंप खोदया जायला। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1 करोड़ 32 टाबरा ने पोलियो खुराक पिलावण रो लगस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काल दे सवाना 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माथे प्रसारित वेला। समाचारा रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके आज जयपुर में विया राज्य थरा कार्यक्रम में कई महत्व ऐलान करिया। श्री शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 उद्यमियों ने भिड़ी सेवा में देवण सारू रैंप पोर्टल और ODOP कॉफी टेबल बुक रोई अनावरण करियो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस साल 25 नवा स्टार्टअप्स ने रोकड़ मदद दिया जाऊन रो ऐलान करियो। श्री शर्मा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पात्र उद्यमिया ने रिको जमीरा आवंटन पाना सौंपया। साथ ही न्यारी न्यारी योजनाओं और फायदो लेवन वाला ने 13 करोड़ रुपयों 32 रकम रा कर्ज और सब्सिडी रा चेक ही दिया। ई मौके बोलता श्री शर्मा कहो के सरकार उद्यमिता ने बढ़ावो और विनिवेश ने बढ़ावो देवण सारू बरोबर काम कर रही है। वणा कहो के विकसित भारत रा विजन ने साकार करण में MSME री महत्व भूमिका है। 33,32,000 MSME रे साथ है राजस्थान देश रो चौथो सबू मोटो राज्य बन गयो है।
2: तो मुझे गर्व है कि 33,00,000 से अधिक MSME उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बन चुका है। यह उपलब्धि हमारे उद्यमों के साथ आत्मविश्वास और कर्मठता का प्रमाण है। अगर उद्यमी आगे बढ़ेगा तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। राजस्थान में अभी बहुत बड़ी गुंजाइश, राजस्थान पोटेंशियल है।

0: की जिस सोच के साथ औद्योगिक वातावरण विकसित करने का प्रयास हमने किया है पिछले 2.5 वर्ष में वो आपके सामने उद्योग स्थापित करना, उनका संचालन करना और उनका विस्तार करना, और वो भी सरल और तेज और पारदर्शी तरीके से हो।
1: कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई मौजूद रिया। एमएसएमई दिवस रे मौके राखी जी जलसा में प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार बनावने लेर कराया जा रहा काम और सकारात्मक संदेश दी रिजियो। राजस्थान रिफाइनरियों प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार ने घणो बधाओ मिलेला। एचपीसीएल कानियों पहला चरण में राज्य भर में 332 नवा पेट्रोल पंप खोलिया जाएला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत में आज जयपुर में भी एचपीसीएल और राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड रा एहलकारा री मीटिंग में आ जानकारी दी रिजी। इस सारू प्रदेश में 304 ठोड़ा री पिछाण करी जा चुकी है, जठे रिटेल आउटलेट्स सारू एचपीसीएल 400 करोड़ रुपया रो निवेश करेला। 31 जुलाई तई ई बारा में नवी नीति तैयार कर ली जाएला। बैठक में वही फैसलो ले लीजियो कि परियोजना रे तहत सरकारी जमीन ने एचपीसीएल ने लीज माथे मुहैया कराई जाएला, जिणो नुआ पेट्रोल पंप स्थापित कराया जा सके। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि जोधपुर लिफ्ट केनाल रा तीजा चरण रो काम आखिरी दौर में है। वणा आस जताई के आवता 3-4 महीना में इन रो पानी जोधपुर पूग जाएला। आज जोधपुर में मीडिया साथे बतल में श्री शेखावत कहो के ई परियोजना में लंबा बगत हूँ चाल रही तकनीक और दूजी खामियां ने दूर कर दिया है, जिणु इन रो काम तेजियों आगे बढ़ रही है। श्री शेखावत बतायो के उनाड़ा में पीवण रा पानी री परेशानियों उबरण सारू 4-32 जलाशय री मंजूरी दी रही है। वना बतायो के फलसूट जलाशय में पानी भरी जो वे चुको है और बाकी रा जलाशय में बेगा पानी पुगेला। देश ने
2: सारे अवरोधों को दूर करने के बाद में अब लगभग हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आने वाले 3-4 महीने में पानी जोधपुर तक तीसरे फेज का पहुंचने लगेगा। तो जिस तरह से क्लोजर्स आते हैं और पानी का संकट, डिमांड गर्मी में ज्यादा होने के कारण से जो हमारे सामने चुनौती आती है, इसके समाधान के लिए मैंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए 4 एस्केप रिजर्वायर बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। तीसरा फेज लिफ्ट कैनाल का बनने के बाद में जोधपुर शहर की आपूर्ति की गुणवत्ता में और गाँव की, ग्रामीण जो है जोधपुर की आपूर्ति की गुणवत्ता में निश्चित रूप से क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन आएगा।
1: देश ने पोलियो मुक्त बनाया राखण रा मकसदों कालेऊ राष्ट्रीय अभियान चलायो जायला। इन रे तहत 5 साल तई रा सगळा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जायला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मुजब राज्य रा सगळा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रा, आंगनबाड़ी केंद्रा और खासतौर बनाई जा पोलियो बूथा माथे आ दवा पिलाई जायला। ये दिन खुराक बचोड़ा टाबरा ने 29 और 30 जून ने स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जार दवा पिलावेला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम बतायो के ई अभियान में मोबाइल और ट्रांजिट टीमा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दूजा आवन जावन री ठोड़ा टाबरा ने पोलियो दवा पिलावेला। राज्य रा टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो के अभियान रे तहत प्रदेश रा 1 करोड़ बत्ता टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाउन रो लगस राखी जो है। इस सारू 60,000 पोलियो बूथ बनाई जा है।
3: कल पूरे प्रदेश में और देश के अंदर 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर कल दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप्स पिलाएंगे, जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स अवश्य रूप से पिलाएं।
1: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान ने कामयाब और असरदार बनावन सारू आज कई ठोड़ा आशा सहयोगिनिया और नर्सिंग पड़ेसरा जागरूकता रैली निकाली। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार साझा करेला। ओ रेडियो मासिक कार्यक्रम रो 135वो एपिसोड वेला। कार्यक्रम रा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला, AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करियो जायला। साथ ही

0: आईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री दफ्तर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इन रोशी दो प्रसारण वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पछे क्षेत्रीय भाषा माए मन की बात कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जायला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिन की यात्रा माथे आज ससेल्स पुग्या। हवाई अड्डा माथे ससेल्स राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वारो स्वागत करियो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहो कि ससेल्स हिंद महासागर में भारत रो महताऊ समुद्री साझेदार और कनेरो दोस्त है। श्री मोदी दोनों देशों रा लोगों रा फायदा सारू भारत और ससेल्स रा लंबी बगत रा संबंध और सहयोग ने बढ़ाओ देवन सारू आस जताई। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहो है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी ने आवता दो साल में देश रा 500 शहर और कस्बा ताई बधाई जायला। भारत टैक्सी रा उद्घाटन सत्र में श्री शाह ई पहल ने सहकारी हलका में एक क्रांतिकारी कदम बताया। वना कहो कि भारत टैक्सी रो मकसद चालका ने सीधो फायदो पुगार निष्पक्ष और साफ गोई बंदोबस्त पारदर्शी व्यवस्था बनावनो है। वना कहो कि इन ने चालका ने मेहनता नो बत्तो मिलेला और लोगों ने हिफाजती और किफायती यात्रा रो फायदो ही मिल सकेला।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रो 16 जलसो काले नवी दिल्ली में वेला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इन सदारत करेला। जलसा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों रा स्वास्थ्य मंत्री सांसद और ठवा एहलकार हिस्सो ले वेला। ई माए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लगस, खाद्य और औषधि सुधार और इनो जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं रा मुद्दा माथे बतली वेला। भारतीय सेना री दक्षिण पश्चिम कमान रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह आज राज्यपाल हरिभाव बागड़े ऊ मिलिया। जयपुर माए लोक भवन माए भी ई भेंट माए वना राज्यपाल ऊ न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करी। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 काले वेला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कानियो आ परीक्षा ली जायला। इन रे तहत कुल 269 ओदा सारू कामयाब उम्मीदवार ने चुनिया जायला। इम्तिहान ने कामयाब और सुचारू और साफ गोई संचालन सारू सगली तैयारियां कर दीजी है। परीक्षा केंद्र माथे करीजा बंदोबस्ता ने करडायू लागू करने रा निर्देश दीजिया है। नबे मौसम राज्य में लाड़ला कुछ दिनों प्री मानसून री गतिविधियां री सक्रियता बरोबर बनी उड़ी है। वठई आथोनी राजस्थान रा कुछ जिला अजय करड़ी गर्मी और उमस रा फीट माए है। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर माए दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह रियो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन माए राज्य रा उत्तर पूर्व और दक्षिणाध हल्का माए आंधी बिरखारी गतिविधियां बनी रहन रा आसार जताया है। कई जिला माए गरज चमक रे साथ झमाझम बिरखा वह सके है। आज 27 जिला माए अंधड़ और बिरखा रो येलो अलर्ट बताई जो है। वठे जुलाई रा पहला हफ्ता माए बिरखारी गतिविधियां माए बढ़वार री आस है। ई बीच आज बांसवाड़ा जिला माए कई थोड़ा तेज बिरखा भी। वठी ने सिरोही जिला रा पिंडवाड़ा और आर एस आर ए रा हल्का माए रिमझिम बिरखा होनो मौसम सुहावनो बनियोड़ो है। आबू आज माए चोखी तादाद माए सैलानी पुग्या है। उठी ने बालोतरा और सवाई माधोपुर माए करड़ी गर्मी और उमस लोग परेशान रिया। भामाशाह सम्मान समारोह 2026 रा राज्य थरो जलसो 29 जून ने जयपुर माए वेला। स्कूल शिक्षा महकमा कानियो बिरला सभागार माए होने वाला एक कार्यक्रम माए भामाशाह और प्रेरकों को सम्मान करो जायला। प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज महकमा रा निदेशक सीताराम जाट बतायो के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावरी जलसा माए भेड़ा वेला। मैं अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 और उद्यमी ने भेड़ी सेवा में देवन सारू रैंप पोर्टल रो अनावरण करियो। HPCL कानियो 400 करोड़ रुपया रो निवेश करने राज्य में 300 नया पेट्रोल पंप खोलिया जायला। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान काले प्रदेश में 1 करोड़ 32 टावरा ने पोलियो खुराक पिलाउन रो लगस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम री 135वीं कड़ी काले सवारा 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और न्यारी न्यारी सरकारी पोर्टल माते प्रसारित वेला।

0: પ્રાદેશિક સમાચાર બુલેટિન પૂરો થયો. મારો આગલો સમાચાર બુલેટિન કાલે સવારે 9 વાગ્યા હિન્દીમાં પ્રસારિત કર્યો જાયેલા. નમસ્કાર.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलामारू चैनल है. मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 7 बजे हैं. लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुआड़.

0: किसान भाई राम राम। देखो सर गणहर कोड मान मनवार रहा गे आपरे फूटर कार्यक्रम गुंजे गांव गुआड आपरी दायरा गीतड़ला हरजस भजन और कई बात करा कि राजस्थानी संस्कृति रो ओळखाण सारू हाजिर हाँ। आज हूँ रामस्वरूप बिश्नोई
1: आर मैं तोलाराम।
0: तो तोलू भाई बात आ है कि आज कार्यक्रम में फूटर गीतड़ला लाया हो रण गीतड़ला हुना हो कपेली दाय करने वाला नाम बोलो।
1: भाई देखो खास बात तो आ है कि
0: कई नाम ना ठीक रहे
1: भाई नहीं हाँ पर खास बात आ है कि आज रोज को कार्यक्रम रही है नहीं मेरी उड़ीक सगला ने हेर दूर दूर बैठा मतलब खासा अलगा बैठा लोग भी है नहीं बे उड़ीक रखे तो भले थे भाई लोग जे नाम पहली बताओ
0: मन तो लगे कि कई बार लोग गीत कम होना चाहे आप नाम बाजे मत होना चाहे
1: नहीं गीत भी सुनना चाहे देखो और
0: पण केन टा ओ
1: डीग रेवे सा
0: डीग रेवे और ओ कागे दियो आयो छ छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी सु द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा जावेंद्र कुमार वर्मा और ए है रघुनाथपुरा श्री गंगानगर सु भाई लालगिरी गोस्वामी हेमलता गोस्वामी हीना हर्षित खुशी गोस्वामी। ओ कागद आयो है सा शादुल शहर सु भाई ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश चौहान शिव प्रकाश चौहान वेद प्रकाश चौहान।
1: अरे मार खाने देखो कई मेल आयोड़ा भाई लोग सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ सु है टीडी मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक नवनीत जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा और कालका जी सु है सुभाष चंद्र बजाज अलीका डब्बवाली सु है बसंत सिंह राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी और छत्रपति संभाजी नगर सुए राजेश सांबले पाटिल राजदीप रासी और शीतल राजेश।
0: तो भाई तोड़ू बात है कि सुनना चाहे है सीमा मिश्रा गाउड़ो और लोकगीत
1: सुनाओ सा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: तो देखो, सीमा मिश्रा रे गैड़ो गीत सुनियो और इन दाई करता है बे, तो आप पहली बता चुक्या। और आगलो जी को गीत लो है नी, देखो गोविंद सिंह का ठोटो है
1: फूटरो गीत
0: और
1: है।
0: इन फूटरो गीत भी है और एक संदेशो भी है। और ई संदेश ने सुनो चावरिया है, देखो गांव चोहलदा बाग पत्सु संजय डिगिया नमन मुस्कान कुनाल। और एक जीगो है आपारे 28वीं मेल आयोड़ा है बीकानेर सुई बल्लभ गार्डन रहा है आपारे एलसी शहजादा कमला देवी पंवार राजकुमार गीता रानी मयंक सत्यनारायण लालचंद वंशिका अनन्या और राजा पंवार।
1: और तोड़ाराम भाई, इन गीत ने हुन ताई ईमेल भेजियो सा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ सू। और ए रोजीना कागज लिखा करे रानी दाई आप बोली भी। ऐसा ही एक श्रोता है पटेल नगर मलोट पंजाब सू, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। और ऐसा गांधी चौक रोपड़ पंजाब सू हरदेव बीका, बलविंदर बीरख, जेतंग बीरख, बीका बीरख और मीका बीरख। और अपना अठेरा ही नियमित श्रोता हरिराम जी मंदिर लारे पुरानी लेन गंगा शहर सू भाई मंजुल मुकुल वर्मा, प्रेमलता, शैलजा, हेम पुष्प, शिव कुमार, सुशीला, नीरज, ममता, हेमंत, दिवाकर, सुमन, युवराज।
0: और एक और देखो अपर नियमित श्रोता है और हमेशा सुनिया करे है और कागजिया लिखे मेल करे है, कमला कॉलोनी बीकानेर सू एडवोकेट सुभाष खत्री जी, तरुण खत्री, वर्षा खत्री और जोय खत्री, ये सब सुनना चाह रही है गोविंद सिंह राठौड़ रे आवाज में पिंजरा
1: गीत ने
0: रुई धुंधे रे।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और ऊर्जा, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव द्वारा किया गया जीवाश्म ईंधन का उपयोग, जैसे कोयला, तेल और गैस। सबसे ज्यादा प्रभाव कोयला डालता है और गैस व तेल भी बहुत ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं। हालांकि अब विकासशील देशों का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन अमीर देशों ने पहले कदम उठाने में देरी की है। आबादी के बढ़ने और आर्थिक विकास से ऊर्जा की मांग बढ़ती है। सौर, पवन, समुद्र, जैव और भूताप जैसे स्वच्छ ऊर्जा के बिना जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, कई देश 2030 तक जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का दुगना से भी अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं, जो पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से अधिक है।
1: तो भाई देखो, सुनियो आपा संदेशों पहली गोविंद सिंह राठौड़ रे गायोड़ो गीत, और अब धकलो गीत जी को है वो सुनो चावरिया है रींगणी छत्तीसगढ़ सु दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और प्रिय दर्शनी आकाशवाणी श्रोता संघ बनायोड़ो। देखो कितनी बढ़िया बात है, रामस्वरूप भाई बहादुरपुर रचोक जलगांव सू संतोष कुमार नरेंद्र रविंद्र सोनार सन्नी मुन्ना और बंडू दादा कनेर मोला पटियाला सू बत्ता परिवार है, जिके में है मुकेश नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका और वंश बत्ता। और देखो भाई बठिंडा रोड डब्बाली सू भी एक मेल आयोड़ा राजेंद्र नारंग अंजू नारंग और मोहित नारंग रो।
2: और भाई तोलाराम बात आ है कि इन दाय ने हुणन ताई भाई आप रे दाय रो कोई गीत हुए हरजस हुए हुणन ताई आप मेल भी भेजो और कागदिया भी लिखो। एक फूट रो मेल आउड़ो है परमिलागंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश हूँ। भाई बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, इन गीत में ही उन्होंने चावे है सा गांव चौखड़ी खुर्द तहसील पिपार सिटी जिला जोधपुर राजस्थान सू भाई धुड़ाराम संदीप पवार रवि पवार।

विष्णु पंवार, अर्जुन, करण और रामनिवास पंवार। इन गीत ने हुणन ताई संदेश भेजो सा गांव चौटाला हरियाणा सु छोटू राम जी खिलेरी, श्रीमती कंचन देवी खिलेरी, हार्दिक खिलेरी और बिटिया समृद्धि खिलेरी। आ सगला री दाय माथे सुना ओ फूटरोसो राजस्थानी लोकगीत।

0: के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति। हेल्दी बीकाना
1: वासा देखो सुनियो आपा संदेशों पहली ममता सिंह रे गायडो और अबे देखो और रामसुरु भाई मेल आयोड़ा है। हाँ मेल आयोड़ा है मेहर नगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र सो है अभिजीत गवाणकर, सरिता प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई सो है सिद्धांत प्रणीता अर्जुन गवाणकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर सो है वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित कुमारी धोनी गवाणकर और अपर देखो राजस्थान रहा है साक्षी है बीकानेर रही अपारा नियमित श्रोता है असगर अली पंजाबगीर, अनवर अली पंजाबगीर, मुमताज, सोनू, टीना, वहीदा, सईदा, ताहिरा, एम ए पमार, खातून बेगम और जोहिया और एक और देखो अपारा मालवा मध्य प्रदेश हुए रघुनाथ मालवीय, सुषमा, मंजू, बबीता, आयुष और ओम प्रकाश जी मालवीय।
2: मन लागे तोलराम भाई ए सगला जका नाम थे बोलिया नी ए आगले गीत ने हुन नाला री डाय हैर कार्यक्रम गुंजे गांव ग्वाड़ रे मायने ए सुनना चाहो है।
1: बिल्कुल साहब
2: आप भी सुनना चाहो तो मेल भेज सको हो, संदेश लिखन आप टाइप कर हमें मेल एड्रेस आपने बतावाला भेज सको हो और कागजिया भी लिखे कई एक फूटो कागज आयो है सा छत्रपति संभाजी नगर सु राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और ताज मोहम्मद असारी, गुलाम साबी राही, महराज जहां ए आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार सु कागद लिखे ऐसा और अपना मोहम्मद सरबाज श्री डूंगरगढ़ सु नियमित श्रोता भाई मोहम्मद असगर पंवार, मोहम्मद अकरम पंवार, राबिया मुन्नी, बरकत हाजम, गुलजार अजीज और असगर भाई ऐसा अगला सुनना चाहे है किसो गीतरलो अदाय करो ऐसा केसरियो हजारी गुलरो फूल चंपा मेथी और साथियारे गवड़ी आवाज़ में लो सा सुनो।

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत नाटक कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: देखो संदेशा सुनिया और अब जी को दखलो गीत है रामस्वरूप भाई वो सुनो जी का चावरिया है
1: मेल आउड़ा है आपका ने
0: और मार्ख ने देखो इचल इचलक जी महाराष्ट्र सु है भाई इचल हाँ इचलक जी है बसंत जी हजारे प्रमोद हजारे महेश हजारे जगदीश हजारे मिन्हास हजारे और आदर्श नगर मलोट सु इन सुन्नो चावरिया राज शर्मा मीना योगेश मेहंदी सौरव साइना और निवान शर्मा और एक और है छत्तीसगढ़ भाटापुरा सु दत्तरेंगी सु आयोडो है मेल द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक और जावेंद्र कुमार वर्मा
1: और ऐसा मलोट कैंप पंजाब सु छत्तीस मिगलानी सीमा अनमोल धर्मपाल वीर सिंह लाटी लखविंदर सिंधु महावीर सिंधु और गुरचरण गरोवर रमेश मिगलानी काशी निवास बंगाली पंजा सू प्रकाश रंभाडे और भारती रंभाडे नागपुर सू टॉनी बोरकर ललिता बोरकर और अपने कन्हई कपिल धाम श्री कोलाज जी सू अपना नियमित श्रोता भाई फूसराज सोनी सूर्य प्रकाश सोनी धर्मेंद्र कला सोनी लालचंद सोनी और जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर सू इन गीत ने दाय करियो है सा डॉक्टर अशोक कुमार शाही श्रीमती संतोष शाही राजश्री और गौरव शाही
0: बिल्कुल शाही सबरी दाय पर आप सुनावा बुंगर खारे गायड़ो
1: और लहरियो
0: लहरियो

0: भूंगर खार गावड़े इन गीत रे हागे ही कार्यक्रम कुंजे गांव गुआड़ वक्त पूरो योसा आज्ञा दे रहा हूँ आपके साथी रामस्वरूप बिश्नोई
1: आर तोला राम ने
0: मोकला मोकला राम राम, राम, राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण जगत कार्यक्रम के अंतर्गत फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुहाड़। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के इस समय 7:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत में अनूप जलोटा का गाया ये भजन। लीजिए अब सुनिए कलाकार सुधा मल्होत्रा के स्वर में ये भजन।

आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित ये रचना सुधा मल्होत्रा के स्वर में। सुगम संगीत सुनिए, अनुप जलोटा को।

अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय 8 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। इस कार्यक्रम की आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

150वीं कड़ी। वाचन स्वर श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति श्री रेमतराम लेघा की और संयोजन श्री अमित सिंह का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम बीकानेर दर्पण।

0: बीकानेर दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और तहे दिल से हमारा नमस्कार। आज के बीकानेर दर्पण में सबसे पहले हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार की चित्रकारी की। हम बात कर रहे हैं फड़ चित्रकारी की। जी हाँ, फड़ चित्रकारी पर कार्यशाला का आयोजन हुआ अजीत फाउंडेशन में। ये कार्यशाला 20 से 27 जून तक आयोजित की गई। राजस्थान के समृद्ध लोक चित्रकला परंपरा को समझाने और सिखाने का कार्य किया फड़ चित्रकारी के विशेषज्ञों ने। आइए पहले बात करते हैं मुख्य प्रशिक्षक चित्रकार डॉक्टर राकेश किराड़ू से।
1: फड़ बेसिकली कपड़े के ऊपर बनाई जाने वाली पेंटिंग्स को कहते हैं और राजस्थान की ये लोक कलाएँ, वैसे राजस्थान में कई प्रकार की लोक कलाएँ हैं जिसमें पिछवई है, मांडना है, कावड़ है, बीकानेर की मथेरण कला है, उसी तरीके से फड़ पेंटिंग भी लोक कलाओं का एक जरिया है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। फड़ विशेष तौर से कपड़े के ऊपर बनाई जाती है और उसमें फड़ में लोक देवताओं की जो जीवनियाँ होती हैं, उन लोक देवताओं की जीवनियों को चित्रित किया जाता है। उनके जन्म से लेकर के जब उनका निर्वाण हुआ, उनके जीवन काल में जो जो घटनाएं हुई या जो वीरतापूर्ण उन्होंने प्रदर्शन किए, उन सबको फड़ में दिखाया जाता है। और गांवों में आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर फड़ बांची जाती है। फड़ बांची जाती है तो उसमें क्या करता है कि फड़ को, जैसे लंबाई में जो फड़े बनती है, उस फड़ को क्या है कि 20 फीट, 30 फीट, 50-50 फीट की फड़ होती है। उस फड़ में जैसे कि लोक देवताओं की जो जीवन गाथाएं हैं उनको गुंथा जाता है रंगों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा। उनमें जैसे हमारे लोक देवता हुए पाबू जी है, अड़बू जी है, देव नारायण जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, इन सब की लोग जो कथाएं हैं, उन कथानकों का निरूपण इन फड़ के ऊपर या कपड़े के ऊपर जो किया जाता है। उनको बांचने का काम जो करते हैं वो भोपा जाति के जो लोग होते हैं, भोपा और भोपी दो होते हैं, जिसमें भोपी क्या करती है कि उस पेंटिंग्स की शुरुआत में जब दीपक होता है, उस दीपक को उसके सामने रखती है और भोपा जो होता है वो जैसे मान लो रावण अथा लिए हुए उसका गायन करते हैं। और वो जैसे कि मान लो देव नारायण जी की फड़ है, तब उनका जन्म कब हुआ, तो पहला चित्र उनके जन्म का होता है। फिर उसके बाद जीवन में जो जो घटनाक्रम चला उनके घटनाक्रम के चित्र बनाए जाते हैं। और भोपी क्रमवार दीपक को उसके सामने रखती है और भोपा जिस चित्र के आगे दीपक रखा गया है भोपा उसको, उसका गायन निरंतर करते रहते हैं। फड़ लगभग राजस्थान के हर गांव में बांटी जाती थी। और यह जब सिनेमा नहीं था, फिल्म नहीं थे, टीवी नहीं था, तो एक मनोरंजन का साधन भी हुआ करता था। उसके साथ साथ जो बड़ा गूढ़ अर्थ था इसका, वो था कि राजस्थान के जो वीर लोग हैं, योद्धा लोग हैं, जो जुझार लोग हैं, उन जुझार की वीर गाथाओं को लोगों में प्रदर्शित किया जाए, गांव-गांव जाकर उनको प्रदर्शित किया जाए, ताकि लोगों में एक बड़ा उत्साह उसके साथ जगे और लोग उससे प्रेरणा पा सके।
0: आपके सहयोगी चित्रकार श्री राम कुमार भादाणी क्या कहते हैं
2: कि यहाँ पर जो फड़ कला का आयोजन रखा है, जिसमें लगभग लगभग 52 बच्चों ने भी भाग लिया है और मैं खुद पिछले लगभग 20 सालों से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। चूँकि मैं जब आर्ट का काम नहीं जानता था, तब से मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी और मैंने नॉर्मल जब चित्रकारी करनी शुरू की थी, तब अजीत फाउंडेशन ने ही मेरी एक पहली चित्र प्रदर्शनी लगाई थी पशु पक्षियों की। उस पशु पक्षियों की प्रदर्शनी को यहाँ पर मेरे को मतलब प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में सीधा उसको वसुंधरा जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके सामने वो प्रदर्शित करने का अवसर मिला। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य रहा उस टाइम कि मैं इस संस्थान से जुड़ा। वह बात लगभग 2007 की है। उसके बाद मैं लगातार इस संस्था से जुड़ा रहा। यह संस्था है जो कला, साहित्य, संगीत के साथ कार्य करती रहती है। समय समय पर ये आयोजन करवाते रहते हैं और मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन समय में लगभग लगभग 2 से 3 कैंप करवाते हैं, जिसमें इन्होंने पिछली बार बीकानेर की गोल्डन आर्ट सुनहरी कलम, मथेरन कला, उस्ता कला जैसे कई आयोजन करवाए गए। इस बार इन्होंने बाबू जी की फड़ के ऊपर पेंटिंग करने का

0: निर्णय लिया तो हमारे गुरुजी डॉक्टर राकेश जी किराडू है, उनसे उन्होंने बातचीत की कि हम राजस्थान की जो लोक कला है उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसलिए फर्ड पेंटिंग के ऊपर आप कार्यक्रम करवाए जाए। तो गुरुजी ने हमें, हमारे साथ जयसी सुथार है, निशा सुथार है और लक्ष्मी चौधरी है और मैं खुद राम कुमार वादनी, इन चार जनों ने गुरुजी ने नाम सेलेक्ट किया जिन्होंने अपना सहयोग दे रहे हैं। अभी लगभग 52 बच्चे काम कर रहे हैं जिसमें 15 साल से लेकर लगभग 35 से 40 साल के युवा चित्रकार इसमें भाग ले रहे हैं।
1: वर्तमान समय की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए क्या कहा शिक्षक लक्ष्मी चौधरी ने?
2: बेसिकली देखी जाए तो हमें हाथ से या फिर हमारे जो मन के भाव होते हैं उन्हीं को हम कपड़े पे या फिर कागज पे उकेरते हैं, लेकिन AI के आने से क्या हुआ है कि हमें हाथों हाथ जो हमें चीज़ चाहिए वो एकदम मिनटों में मिल जाती है, जिसे बनाने में हमें काफ़ी दिन लग रहे हैं, महीने लग रहे हैं, वो हमें काफ़ी 2-3 मिनटों में मिल जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि AI हर बार सही हो, कुछ चेंजेस हमने भी देखे हैं। जैसे अभी यहाँ हमारा फर्ड पेंटिंग का कैंप चल रहा है तो उसमें हमने ऐसा देखा कि हमने बच्चों को AI से इमेज बना के दिखाई या फिर इमेज बच्चों ने खुद ढूंढी है AI से, तो उसमें ऐसे चेंजेस आए हैं कि जो नेचुरल कलर्स हैं उनको हटा के उन्होंने और कलर्स ऐड कर दिए हैं, जो कि लोक कला में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, वो नेचुरल कलर्स ही यूज़ करते थे। और फ़ोन का जहाँ तक यूज़ करना है कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो, हम कई कई चीज़ें नई भी सीख सकते हैं उसमें से कि ये डिज़ाइन पहले ऐसे बनाया जाता था, हम इसमें ये ऐड कर दें तो क्या पता ये अच्छा भी लगे। तो हाँ, AI की वजह से चेंजेस तो बहुत आए हैं, वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, मैं ये बताना चाहूँगी आपको। लेकिन ये कैंप, मैं चाहूँगी कि ऐसे कैंप और होते रहें जिससे बच्चों का रुचि जो है वो और बढ़े।
1: और आइए अब सुनवाते हैं आपको उन प्रतिभागियों के विचार जिन्होंने फर्ड चित्रकारी का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
3: मेरा नाम अंकित व्यास है। इस कैंप को चलते हुए 5 दिन हो गए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से राजस्थान की जो खोई हुई हमारी जो शैलियाँ हैं उनको वापस उजागर किया जा रहा है और बच्चों को सिखाया जा रहा है, हम जैसे नव चित्रकारों को सिखाया जा रहा है, तो हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। और सारे जो यहाँ के स्टाफ भी है और हमारे जो शिक्षक लगे हुए वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया ढंग से सिखा रहे हैं। और फर्ड चित्रकला हमें बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं पहली बार पता चली है। और हमें हमारे देश के जो वीर योद्धा थे पाबू जी हड़बू जी, जिसे लोक देवता भी कहते हैं, उनकी जीवनी के बारे में भी पता चल रहा है साथ साथ में, और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है।
2: दीक्षा पुरोहित।
4: दीक्षा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ फड़ की चित्रकला की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको?
5: ये एक ना, देखा जाए तो आप अपने ट्रेडिशन से, अपने रूट्स से आप जुड़ते जा रहे हैं, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई मतलब हम जो अभी की जनरेशन है वो सारी चीज़ें भूल चुकी है, और हमारे लिए वापस अपने रूट्स की तरफ वापस जाना है, नए कलर, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम सीख रहे हैं अभी इस वर्कशॉप में, वो 700 साल पुरानी तरीके का आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, ये जोशी क्लैन के थ्रू बनाई गई थी। तो ये एक तरीका है कि हम हमारे रूट्स को जान सकते हैं, हम राजस्थान से तो हमें पता है कि ये भी एक आर्ट फॉर्म है, मोस्टली लोगों को खाली एक मिनिएचर पता होता है, पर अब धीरे धीरे जैसे हम जा रहे हैं तो हम और भी चीज़ें सीख रहे हैं। ये जो चित्र है ये ना, एक बहुत ही, देखा जाए तो आपको एक सेंटर ऑफ पीस मिलता है, शांति मिलती है, और सबसे बड़ी बात है आप इतिहास को जानते हो, जो आपके लिए हमेशा एक चीज़ है, जो आप हमेशा अपने साथ रख सकते हो, आप किसी को बता सकते हो कि मुझे पता है मेरे शहर के बारे में, मेरे स्टेट के बारे में मुझे पता, तो आप ऐसे बता सकते हैं
4: जी। कुल मिलाकर अपने हाथों से बनी हुई चीज़ का अलग महत्व होता है और AI या किसी और साधन से बनी हुई चीज़ का वो अर्थ नहीं होता है।
5: AI तो इन चीज़ों को नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें पता है, हमने ये सारी चीज़ें हमें पता चला है, हमने हमारी स्टेट के बारे में हमें पता है। AI जब यहाँ रहा नहीं तो उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर हाँ वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हम एक ह्यूमन है, तो हमें उनकी फीलिंग्स, उनकी सारी चीज़ों की कदर है, तो हम जो भी बना रहे हैं अपने हाथों से उसका एक अलग ही भाव है।
6: पूर्वांशी पुरोहित, मैं आर्ट फील्ड में ही हूँ, पर मेरे को है ना इतना राजस्थान कला के बारे में, फर्ड जो चित्रकला है उसके बारे में यहीं से ही पता चला है, मतलब इतना बुक्स और मैं इतना डिटेल से बताते नहीं है, यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे सब कुछ बताया जा रहा है, और यहाँ पे हमें ये भी नहीं दिया है कि आप अपने फ़ोन से बनाइए, फ़ोन से भी दूर रख रहे हैं, हमें प्रिंट्स दे रखे हैं कि आप लोग इसको देख देख के बनाइए, सीखिए, और यहाँ पे सर और हमें सब कुछ बता रहे हैं, कलर करना, प्रोसेस जो भी होता है। और आज जैसे कि हमें फट चित्रकला की वीडियो भी दिखाई जा रही है कि इसका क्या हिस्ट्री है, सब कुछ हमें बताया जा रहा है इसके यहाँ पर।
1: श्रोताओं,

0: ये सप्ताह बीकानेर को एक नई रेल सेवा मिली। ये नई रेल बीकानेर लालगढ़ अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस है। इस नई रेल को बीकानेर रेलवे स्टेशन से माननीय केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि एवं न्याय एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर क्या कहा माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने।
1: सबसे पहले आपके सामने जो विषय रखूंगा वो विषय है हमारे पूरे बॉर्डर एरिया का। ये हमारे पूरे बॉर्डर एरिया का प्रोजेक्ट, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है, जिसमें हमारे अगर हम देखें सरूपसर से जैतसर से अनूपगढ़ से रोजरी बीकानेर एक लाइन ये हो गई, और अनूपगढ़ से खाजूवाला से जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए भिलड़ी। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि DPR बनाना, तो आप सबके साथ मिलकर सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है। जो देश के लिए सोचते हैं साथियों, वही जनता के लिए, वही पब्लिक के लिए, वही विकास के लिए काम कर सकते हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं इस मौके पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एवं बीकानेर के सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी बात में क्या कहा।
2: रेलवे ने 100 साल में बीकानेर में क्या क्या इनोवेशन किए, क्या क्या तरक्की की, वो सारा विवरण एक एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया गया था। वो एक बहुत शानदार अवसर था और इसी रेलवे स्टेशन पे हुआ था। आज का भी अवसर शानदार है, बीकानेर अहमदाबाद से साबरमती एक्सप्रेस के माध्यम से सीधा जुड़ रहा है। बीकानेर में रेलवे विकास क्या हो सकता है, अनूपगढ़ से लेकर के खाजूवाला तक लेकर के ये कैसे बॉर्डर का विकास हो सकता है? रेलवे इसमें है नहीं, बॉर्डर है, रेलवे नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस काम में बहुत तेजी आई है।
0: इस अवसर पर स्थानीय विधायक, रेलवे के अधिकारी और बीकानेर की जनता ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। सुनते हैं बीकानेर पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने क्या कहा।
3: हमारा बीकानेर बहुत भाग्यशाली है कि मोदी जी की सरकार बनने के पश्चात लगातार बीकानेर कोई न कोई ट्रेन मिलती जा रही है। वंदे भारत मिली, आज ये मिली, और आगामी जैसे हमारे रेल मंत्री जी ने अभी घोषणाएं की है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीकानेर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती में भी अभी रेल चलनी शुरू होगी, इस प्रकार रेलवे लाइन भी उधर बिछ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। और आज का तो इसलिए है कि बीकानेर वर्षों से एक मांग चली आ रही थी कि बीकानेर को अहमदाबाद सीधा जोड़ा जाए, तो इस साबरमती एक्सप्रेस के माध्यम से बीकानेर को अहमदाबाद से जोड़ा गया है।
0: और आइए अब सुनते हैं इस नई रेल के आरंभ होने पर क्या कहते हैं आम लोग।
4: मेरा नाम अतीक है और आज हम बीकानेर जंक्शन में बैठे हैं, और आज राजस्थान को एक नई सौगात के रूप में ट्रेन मिली है, जिसे राजस्थानवासी और गुजरातवासियों को सुविधा प्रदान होगी। और इस ट्रेन के उद्घाटन के लिए आज माननीय मंत्री अश्विनी जी वैष्णव यहाँ आए हैं।
5: मेरा नाम सुरेंद्र पाल।
6: आज यहाँ बीकानेर साबरमती ट्रेन रवाना हो रही है, आप आए प्रोग्राम में, कैसा लग रहा है?
5: अच्छा लगा, पहली बार चल रही है बीकानेर से साबरमती के लिए, तो अच्छी बात है।
7: हाँ, ये बीकानेर से अहमदाबाद के लिए एक्सप्रेस चलाई गई है, अच्छी, इससे रोजगार वगैरह भी बढ़ेगा, लोगों के लिए सुविधाएँ बढ़ेंगी, अच्छा साधन है। बाकी और चीज़ों से जैसे पब्लिक सर्विस होगी ना, बस होगी, रेल होगा, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर आएंगे अश्विनी वैष्णव, वो इसका पदार्पण करेंगे, जिससे कि लोगों के लिए अच्छे सुख सुविधा का साधन है ये।
8: ये निश्चित रूप से बीकानेर और जो राजस्थान के इस बीकानेर शेखावटी हनुमानगढ़ इस क्षेत्र की जनता के लिए सीधा जुड़ाव अहमदाबाद से हो रहा है, और हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हम लोगों को एक सीधी दैनिक रेल सेवा मिली है, और इसके लिए हम लोग माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

0: 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बीकानेर में योग दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अपने उद्बोधन में कहा,
1: बीकानेर की शौर्य भूमि पे आज आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ साथी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग को संभालने वाले श्री अर्जुन जी मेघवाल जी का। आपने मुझे बीकानेर आने का न्योता दिया कि इस बार आप योग बीकानेर में करें। जब रेल मंत्री आए तो रेल भी साथ आनी ही पड़ती है, तो आज बीकानेर से अहमदाबाद की नई रेलवे सर्विस भी चालू होगी। यहाँ से योग के बाद में हम सभी स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बीकानेर से अहमदाबाद की इस रेल के लिए माननीय मेघवाल जी ने बहुत प्रयास किया था और अपने करीब करीब पूरे इस क्षेत्र में बीकानेर से, जोधपुर से, लूणी से, आगे जालौर से जो अहमदाबाद की कनेक्टिविटी की लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड भी आज पूरी होगी।
0: केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग के माध्यम से हम निरोग कैसे रह सकते हैं, इस दिशा में जो एक मार्ग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया, आज पूरा संसार उसका अनुसरण कर रहा है। अभी आपको एक प्रोटोकॉल के तहत योग भी करना है, योग की क्रियाएं भी करनी है। हमारे शरीर में चार पार्ट है ऐसा माना गया है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि शारीरिक क्रियाएं ही मात्र योग नहीं है, योग का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन।
0: योग का संदेश दिया राजस्थान सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने।
3: योग संदेश, योग प्राचीन भारत के मानव कल्याण के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत है। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है, अर्थात मन को शरीर से जोड़ना एवं मानव को प्रगति से जोड़ना। योगाभ्यास की प्रणाली को, तकनीकों को समूह मात्र नहीं होकर जीवन जीने का तरीका है। योग व्यक्तिगत देखभाल का सार्वभौमिक देखभाल में बदलने की कला एवं विज्ञान है। आधुनिक शोध में बहुत सारे मनोदिक विकारों में योग की प्रभावकारिता सिद्ध है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है तथा व्यक्ति के समग्र विकास में योग की भूमिका को देखते हुए ही वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी है। भारत आदिकाल से विश्व कल्याण के विचारों का समर्थक रहा है, वो दिशा में योग एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। आज 190 से अधिक देश योग दिवस मना रहे हैं और योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकारों को दूर करने में मदद मिल रही है।
0: कार्यक्रम में विभिन्न आसनों और प्राणायामों का अभ्यास योग प्रशिक्षकों, आयुर्वेद विभाग की डॉक्टर संतोष शेषमा, योग गुरु दीपक शर्मा, वहीं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बीके कमल बहन ने ध्यान करवाया। आइए सुनते हैं एक झलक।
4: श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, ये एक चक्कर हुआ, एक बार और दोहराएं। एक, दो, तीन, चार। ग्रीवा चालन की तीसरी क्रिया, श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे को देखने का प्रयास करें। कोशिश करें थोड़ी और कंधा एक सीध में हो। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे को, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति, ये एक चक्कर हुआ, एक बार और दोहराएं।

0: स्वचालन की चौथी क्रिया श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को वक्षस्थल से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए घड़ी की सुई की दिशा में ग्रीवा को चक्राकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ये एक चक्र हुआ।
1: इस आध्यात्मिक स्वरूप में परम चैतन्य परमात्मा की ऊर्जा

0: स्वयं अनुभव कर रही हूँ। परम चैतन्य परमात्मा का प्रकाश, उनकी धवल किरणें हम सब की ओर प्रवाहित हो रही है।
1: योगाभ्यास आरंभ होने से पहले हमने बात की जिला कलेक्टर श्री निशांत जैन से।
2: आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज बीकानेर में इस स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर के ऐतिहासिक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी उपस्थित हैं। यहाँ पर पूरा राज्य सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से, केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से आयोजन किया जा रहा है, और मैं सभी से अपील करता हूँ कि योग दिवस में बढ़ चढ़ के भाग लें।
1: योग करने आए लोगों में उत्साह देखने को मिला। आप भी सुनिए क्या कहते हैं योग के संबंध में ये योगाचारी।
3: संतोषानंद, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि योग एक शरीर के राष्ट्र की विभूति अंग है। जो योग तो आधार के बिना स्तंभता नहीं होती।
4: मेरा नाम शिवरतन बिश्नोई है, मैं महिला बाल विकास विभाग से हूँ, और आज 12वां योग दिवस हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी एक साथ मिलकर योग दिवस मनाने जा रहे हैं। आज माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी साहब यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और हम साथ में मिलकर एक अच्छा संदेश देंगे।
5: मेरा नाम देवी प्रकाश शर्मा, और योग बचपन से एथलेटिक जिमनास्टिक ये मेरी रही, उसके बाद में मैं ये सामाजिक प्रतिक्रिया में समाज की बराबरी करने के लिए रात दिन एक दिन करता रहा, उसके बाद में योग में लगा मैं। और मेरा ये मानना है कि अगर योग आदमी करेगा सारे रोग दूर हो जाएंगे। कैसे होंगे ये खुद का मतलब विवेक पे सोचने की बात है, और करके देख ले आदमी।
1: कार्यक्रम के अंत में रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने योग संकल्प दिलाया।
6: मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपने मन को संतुलित रखूंगा, इसी में मेरा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ।
1: श्रोताओं, 25 जून को निर्जला एकादशी के अवसर पर बीकानेर आस्था और सेवा भाव में सराबोर नजर आया। लक्ष्मीनाथ मंदिर और जयपुर रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। सभी मंदिरों में मेले जैसा माहौल था। दर्शन पूजा के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। दिन भर पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान, दान पुण्य और जल सेवा का सिलसिला चलता रहा। आपको हम लिए चलते हैं नगर सेठ यानी लक्ष्मीनाथ मंदिर में, जहां कथावाचक क्या कहते हैं निर्जला एकादशी और इसको करने से स्वास्थ्य लाभ के बारे में।
7: हर साल की बात है, इस बार भी हमने एकादशी के व्रत की कथा जनमानस के कल्याण के लिए निरंतर हम कर रहे हैं, तो जनमानस का कल्याण हो ऐसी भावना से हम एकादशी, जो निर्जला एकादशी है, उसके व्रत की कथा हम सुना रहे हैं। हर एक प्राणी मात्र को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा व्रत है, साल भर में यदि हमने कोई भी व्रत नहीं किया है तो एकादशी के दिन, ये निर्जला एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं, तो साल भर की जितनी भी एकादशी है उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो हर एक प्राणी मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, कई जन्मों तक उसे फल की प्राप्ति हो जाती है, और केवल उस व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को उसका फल मिलता है।

0: इस एकादशी का व्रत करता है, शरीर के लिए भी बड़ा अच्छा है। ज़्यादातर देख रहे हैं हम लोग आज के समय में हार्ट की, हृदय की बीमारी निरंतर बढ़ रही है। एकादशी के दिन, एकादशी का जो व्रत करता है, एकादशी के दिन भगवान का जो भजन करता है, उन्हें हार्ट संबंधी जो बीमारी है वो कभी लगती नहीं।
1: छब्बीस जून को इस्लाम के

0: हर्ट संबंधी जो बीमारी है वो कभी लगती नहीं है।
1: 26 जून को इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में विभिन्न मोहल्लों में ताजिए जियारत के लिए रखे गए। करबला स्थित हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के प्रतीक स्वरूप स्थापित ताजियों की नोहा खुवाने के लिए बड़ी संख्या में अकीकतमंद पहुंचे। ताजिए बनाने वाले कलाकारों से हमने बात की, तब आपने बताया
2: इसको बनाने में लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। कांच वगैरह सब कटिंग करना, पहले उसका फ्रेम बनाना पूरा, उस हिसाब से कांच कटिंग करके फिर उसको पूरा सेट करना पड़ता है। लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं इनको तैयार करने में। और सेल वगैरह करने के लिए कुछ नहीं है, सेल नहीं करते। अगर कुछ कोई आते हैं तो फ्री सेवा में उनको बना के देते हैं, चार्ज कुछ नहीं लेते मुहर्रम का। जो उस पर खर्चा आता है उस खर्चे के तहत ही मुहर्रम बना के दे देते हैं। बस एक नई चीज़ लुक जो है वो मार्केट में देने का था कि भाई इस तरह से ही भी ताजिए बनाए जा सकते हैं, तो उस हिसाब से बनाया इसको। एक नया लुक मिला, नई चीज़ लोगों को देखने के लिए मिली। बाकी प्रोसेस वही है जो चीज़ें दूसरों में होती है, वो सारी चीज़ें इसमें। ये भी 3 हिस्सों में, वो भी 3 हिस्सों में बने होते हैं।
3: हमारे क्या है कि पूर्वजों से बनता हुआ आ रहा है, कम से कम तकरीबन 125 साल हो गए बनाते हुए। पहले मेरे दादाजी बनाते थे, फिर मेरे पापा बनाते, फिर मेरे चाचा जी बनाते, फिर उसके बाद मेरा नंबर आ गया। नहीं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, वैसे 10 से 12 दिन लगते हैं एक ताजिए बनाने में।
1: मुहर्रम और ताजिए का क्या संबंध है, कुछ जानकारी आपके पास हो तो?
3: मुहर्रम तो असली में एक इस्लामिक महीना है और ताजिया हज़रत इमाम हुसैन की याद में बनाते हैं।
1: अब ये आपने बना दिए, और भी बीकानेर शहर में और भी जगह जगह ये बन रहे हैं, इसका फिर मुहर्रम के दिन क्या किया जाता है?
3: आलम का जुलूस निकला था, वो करबला ले जाते हैं, करबला में शहीद करके दफना दिए जाते हैं।
4: और यहाँ के बीकानेर के जितने भी है रामपुरियों की हवेलियाँ और ये, और जितने भी ताजिए बन के जाते हैं यहाँ से बन के जाते हैं, और हमारे बुजुर्गों ने रामपुरियों की हवेलियों में, जूनागढ़ में सबसे ज़्यादा काम यहाँ के कलाकारों ने किया है। जो इन ताजियों की वजह से आज तक ये परंपरा और ये कला चलती आ रही है, क्योंकि ताजिए बनते हैं इनमें इतना बड़ा काम होता है। एक हवेली का काम, जैसे रामपुरियों की एक हवेली का जितना काम कर लो उतना ताजिए का कर लो, इतना टाइम लगता है और इतना वक्त लगता है, इतना ही पैसा लगता है इनमें।
5: हम इनकी मेहनत नहीं लेते हैं, इनका कोई सैलरी वगैरह हमारे के सब एक मदद खिदमत के तौर पर ही काम करते हैं। धार्मिक काम है तो सब अपने समाज के लोग आ जाते हैं, जिसको जितना वक्त मिलता है वो उतना काम करता है, क्योंकि मजदूर सबका हमारे यहाँ ज़्यादा है, सर्विस वाले कम हैं, तो मजदूर सबका इसमें ज़्यादातर हिस्सा लेता है और बड़े तन मन धन से मिलके करते हैं इस काम को।
1: तो ये था आज का बीकानेर दर्पण। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की, वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अगले शनिवार तक यानी अगले अंक तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज हम आपको सुनवा रहे थे इस कार्यक्रम की 150वीं कड़ी। कार्यक्रम में वाचन स्वर था श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुतकर्ता थे श्री रेवंत राम लेघा और संयोजक श्री अमित सिंह। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय 8:30 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोक संगीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल, और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए, आप सुनिए ये सरिता गोस्वामी का गाया लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में सरिता गोस्वामी के गाए इस लोकगीत के बाद लीजिए अब सुनिए स्वाति शर्मा का गाया ये लोकगीत।

0: स्वाति शर्मा और गौरव जैन के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के इस समय 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज एट 9 हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा।

0: और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोको डीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the

0: silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु कैंपगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंपगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाए ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के

0: सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case.

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था वो कौन थी। संगीतकार मदन मोहन और गीतकार राजा मेहदी अली खान।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। जी हाँ, फिल्म संगीत जो हमें मन को उन सुकून के उन पलों में ले जाता है और कुछ यादें भी सामने लेकर आता है। रात श्रोताओं जितनी गहरी होती जाती है, मन उतना ही शांत होने लगता है। ऐसे में कुछ धुनें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती हैं। इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें चांदनी, प्यार और इंतजार की खूबसूरती एक साथ झलकती है।

आप सुन रहे थे जाल फिल्म का ये गीत हेमंत कुमार के स्वर में, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन। श्रोताओं, रात हमें एक बात सिखाती है, हर अंधेरे के बाद नई सुबह जरूर आती है। इसलिए यदि आज का दिन कठिन रहा हो तो उसे यहीं छोड़ दीजिए और इन सुरों के साथ मन को

0: सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा और शैलेंद्र की रचना गाइड फिल्म में ये गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आप सुन रहे थे इस गीत को, और इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। रात की खामोशी में अच्छे विचार, अच्छी यादें और अच्छा संगीत, ये तीनों मन को नई ऊर्जा देते हैं। हम कामना करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अब आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के इस समय 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान भारती हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
3: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर

0: भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को भी लाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है,
1: जी
0: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन।
1: जी
0: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है वहां पर, जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं।
1: जी
0: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहां पे कैसे भूकंप आते हैं, वहां पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहां पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पर जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो

0: पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और डेथ हो गई। तो घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं। लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
2: जी,
3: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
2: जी,
3: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
2: जी।
3: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से

0: संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए

0: के योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम कोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम FTTH ब्रॉडबैंड समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल

0: और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है।
2: जी,
3: तो दैट टेक्स केयर ऑफ माय दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की।

0: 14 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अर्थात ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम विज्ञान भारती। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे कलाकार प्रभात मुखोपाध्याय का सितार वादन।
2: समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और ने दी है। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
3: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। बॉर्न इन फैमिली ऑफ रिच म्यूजिकल ट्रेडिशन।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by मुस्तफा हुसैन। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कलाकार प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। ये कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के इस समय 11 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच

0: किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor.